0: 102 फिरौन के पास जाओ और कहो कि हम तमाम जहानों के मालिक के भेजे हुए हैं और इसलिए आए हैं कि आप बनी इसराइल को हमारे साथ जाने की इजाजत दें। फिरौन ने मूसा से कहा, क्या हमने तुमको जबकि तुम बच्चे थे परवरिश नहीं किया था और तुमने बरसों हमारे यहां उम्र बसर नहीं की? और तुमने एक और काम किया था जो किया तुम नाशुक्रे मालूम होते हो। मूसा ने कहा कि हां, वो हरकत मुझसे नागहां सरजद हुई थी और मैं खताकारों में था। फिर जब मुझे तुमसे डर लगा तो मैं तुम्हारे पास से फिरार हो गया। फिर मेरे रब ने मुझको नबूवत और इल्म बख्शा और मुझे पैगंबरों में से किया।
1: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون

फिरौन ने कहा कि अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। मूसा ने कहा, खा मैं आपके पास रोशन चीज लाऊं यानी मोजेजा। फिरौन ने कहा, अगर सच्चे हो तो उसे लाओ दिखाओ। बस उन्होंने अपनी लाठी डाल दी तो वो उसी वक्त साफ अजदहा बन गई, और अपना हाथ जो निकाला तो उसी दम देखने वालों के लिए सफेद बुराक नजर आने लगा। फिरौन ने अपने गिर्द के सरदारों से कहा कि ये तो एक माहिर जादूगर है, चाहता है कि तुमको अपने जादू के जोर से तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, तो तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा कि इसको और इसके भाई को कुछ मोहलत दीजिए और शहरों में नकीब भेज दीजिए कि सब माहिर जादूगरों को जमा करके आपके पास ले आएं।

0: iron store Halani, wholesale depot, a name to be trusted.
1: Saria, Garder, Tier, Engel, Channel Patti, Lohi Darwaza, Silverja Chong, Cement, Reti, Kresh, Airang Vagera, Bazar, Hambaria, Dastyabahin.
0: Hane Yachu, Mehran Iron Store, Nazd Baloch Petrol Pump, National Highway Halani.
1: Raptilai, Proprietor Gulam Nabi Mughal, 0300-320-04372, 0242-460100.
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
3: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाने पहिजी स्किन के दियो एक नओ ग्लो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर दी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
5: सिंध डेंटल क्लिनिक डॉक्टर रफीक अहमद कंसल्टेंट डेंटल सर्जन बीडीएस आरडीएस सीएनओ सीआरथो एचएसए इस्लामाबाद असावड बगैर तकलीफ जे दंद कढ्या आई नवा दंद लगाया वइदा आहिन हर कम जदीद टेक्नोलॉजी सा कयो विदो आहे जरासीम खा पाक औजार वक्त सुबह 8 वगे खा मझंद 1 वगे ताई पतो नज़्द गुल होटल हालाणी राते जे लाए 0300 51 63 68
6: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अल हबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 578 शहरों में बैंक अल हबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
3: बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
7: तवा के तवा जी क्लास ताई वठी वना ये आहे तांजी क्लास
8: कदें ये थींदो आहे त बारन जे सिखण समझण जी सलाहियत महदूद लगंदी आहे
9: अस्सलाम वालेकुम बारो
8: मसलो तालीम न पर खुराक में जरूरी غذا जी घटताई हुंदी आहे
9: तवां जो छा नालो आहे
7: मैडम तवां स्कूल ऐ बारन जो हाल ॾिसी परेशान थी वयो पढ़ाई में बिल्कुल लन जी दिल न लगंदी बार-बार फेल थींदा आहिनि
9: तवां पंहिंजो लंच बॉक्स ॾेखारियो
10: हिते कंहिंखे हिननि जो ख़्याल ई नाहे आयो
9: ॿारो अॼु खां असां हिकु नओं सिलसिलो शुरू कंदासीं असां सिखंदासीं त सिहतमंद खाधो कहिड़ो हूंदो आहे छा ठाहियो अथई अहमद
8: मुतवाज़िन ग़िज़ा महांगी नाहे हूंदी बहितरीन ग़िज़ा ॿारनि जो बहितरीन मुस्तक़बिल ही पैगाम कश फाउंडेशन एंड कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफा

जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मां खाधो गरम करे थी वठा
2: बुध थकल थकल पी लॻे घणी ख़ैरियत आहे
1: तव्हांजो पुट सुम्ही नथो पूरी रात मां त खीर प्यारे प्यारे थकी थी पवां
2: हाल वे मां अचां थो

0: हे वट एड़ी शयूं खांदी कर सेहत ठीक रहंदी
1: तवा खाओ
0: ना ना तू खा तू ना खांदी ते मां के खाइंदम
2: तेरा ख्याल मेरी जिंदगी का सबसे
3: खीर पियारण वारी माओ जी बेहतरीन गिजा माओ ऐ बार इन्हीं जो हक का है ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐ कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कर
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजे गए रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
5: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे
6: अस्सलाम वालेकुम अदा
7: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
6: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
8: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नजगरलस डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
9: 03013992836
10: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News. आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम बहरा पर

फील्ड मार्शल सिर आसिम मुनीर चवाहिद अमेरिका हैकरों को बिन मुल्कन की जंग न हुई पर बिन नजरियन में फैसलाती जंग हुई। 7 मई के विच वाली रात का 10 मई तई दुश्मन असाजे कौमी वकार के आजमाने की नाकाम कोशिश कई। मई 2025 की जंग का ओचतो ईंदड़ जंग न हुई। माजी में भी दुश्मन पाकिस्तान से बेबुनियाद हथ ठुकिया इल्जाम लगाने की कोशिश कई पर हक की जंग में भारतीय जहाज के मुंह टोड़ जवाब दिनो पो। पाकिस्तान की दुश्मनी के हर भेरे शिकस्त जो मुंह ढो पो। अमरीश ऑपरेशन बड़ियाल मरसूस के 1 साल मुकम्मल थे जीएचक्यू में मनकद खास तकरीब के खिताब कदे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तो दुश्मन जानी वाणी पाकिस्तान खिलाफ अगते अग्राई जा असर इंतहाई खतरनाक तकलीफ हूं। भारत जो ख्वाब है तो पाकिस्तान के अस्करी जहाज सफारती अकेलाई जो निशानो बढ़ाए खेते में ताकत जो तवाजुन तब्दील करे। यो ख्वाब उन कद ए सलाहियत का घणो वधीक है जो को पाकिस्तान कदें भी कामयाब थे डींदो। फतेह मिजारन ए पाक फिजाया के शाहिनन दुश्मन के 26 का वधीक फौजी हदफन के कामयाबी से निशानो बढ़ाया। अवाम ए कौमी क्यादत जो पैगाम है तो मुल्की खुदमुख्तियारी सरहदी सलामत ए कौमी वकार से को भी ठाह कबूल ना है। भारत जंग के नतीजे में थियल जानी ए माली नुकसान की कीमत ईंदड़ वक्त तई अदा कन्द रहो।

0: Just wait for our response.
1: Pakistan, Hamesha Zindabad.
2: हक जी जग में भारत जी प्रतनाक शिकस्त एक साल मुकम्मल अज समूरे मुल्क में फतेह जो जश्न मल्हायो पियो वञे। जीएचक्यू रावलपिंडी में शानदार तकरीब, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज एंड फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में मेहमान खास तौर शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ के शहीद की यादगार से हाजिरी गुलदस्तों रखो पो ए फातेह कहानी कई। आईएसपीआर पारा जारी थियल बयान में छे विवाद कौम की हिमायत से हथियारबंद फौज सभी अंदरूनी अंबार चैलेंजन के मुंह डेण मुकम्मल तौर से तैयार है। जंग में फतेह हथियारबंद फौजन की तैयारी जहा पेशेवराना सलाह जो सबूत है। हक जंग में कामयाबी आवाम जो हथियारबंद फौज के अतमाद के मजबूत किया है।

भारत खिलाफ ऑपरेशन अमेरिकन जी कामयाबी के एक साल मुकम्मल थियण ते सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ जो कौम ए पाक फौज के वाधायूं। आसिफ जरदारी चो तो पाकिस्तान अमन पसंद रियासत है पर हर जारियत जो भरपूर जवाब दियण भी जानू था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क्यादत में पाक फौज दुश्मन के मुंह तोड़ जवाब दिनों। भारत के गैर कानूनी कब्जे हेठ वलायल कश्मीर के मसलो ठहराने मुताबिक हल थियण घुर्जे। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की इखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखो। वजीर आजम शहबाज शरीफ पैंने पैगाम में है दुश्मन खिलाफ कामयाबी थे अल्लाह ताला के बेशुमार निमतन एहसास सजदो करण जो दी है। अज असा उन अजम हिम्मत ए साबित कदमी के याद क्यों पा जेका पाकिस्तान आजमाइश के वक्त में डेखारी दुश्मन के जबरदस्त शिकस्त डनी। भारत खिलाफ हक की जंग में कामयाबी के एक साल मुकम्मल थियण ते पीपल्स पार्टी कराची की सीवीओ वट शानदार तकरीब। वडे वजीर मुराद अली शाह खिताब करे जो पाकिस्तान हक की जंग में दुश्मन के इबरतनाक शिकस्त डनी। भारत सदाई पाकिस्तान से कूड़ा इल्जाम लगाई रो है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है ए खिते में अमन तोड़े इस्तेकाम चाहे तो। सदर आसिफ जरदारी शेख बिरेंद्र भुट्टो चीन का मिजाइल टेक्नोलॉजी वरती पाकिस्तान या मिजाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर कुछ ही कलाकन में भारत के शिकस्त डनी। भारत के पैंजन ही जहाजन से वो नाज हो पाकिस्तान उ जहाज किराए तबाह कर छा। अज पाकिस्तान खिते जो अहम मुल्क बणजी चुको है। अमेरिका हक में कामयाबी की खुशी में गवर्नर हाउस में भी शानदार तकरीब। भारत के इबरतनाक शिकस्त डींदड़ पाक फौज के भेटा पेश कई वही।

0: अकबर जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थियण ते सिंध के मुख्तलिफ शहर में रैलियों कराची डॉक्टर्स जीएनसीएच खां जना अस्पताल ते रैली पाक फौज के भेटा पेश चंड मोहम्मद खान जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थियण ते रैली कढ़ी पई पनवाकल में पाक फौज हिमायत में रैली निकती खैरपुर में मेडिकल कॉलेज का सिविल अस्पताल में रैली कढ़ी वही लड़कणों में तालीम खाते पारा जंग में कामयाबी की खुशी में रैली कढ़ी वही पीरे जो गोठ में मुख्तलिफ स्कूल के उस्तादन शागिर्दन ए शागिर्दायन पारा रैलियों कढ़ी वयूं भारत के इबरतनाक शिकस्त देने पाक फौज के भेटा पेश कई वही
1: होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद इदारो इर्शाद ऑटोज होंडा शोरूम मेहरापुर नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी के मुकरर कर रेट ते दस्तयाब है सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इर्शाद ऑटोज ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटर जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इर्शाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320180003
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद रबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ

0: Hussain Memon, Managing Director, Mazhar School System, 03000027234. Nisar Ahmed Memon, Principal, Mazhar School System, Mehrapur, 03013865453.
1: छा अव्हां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहिरें ई इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तव्हां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज
2: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385569
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
3: न अदा।
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
6: 03013992836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: Aashiq Honda Showroom Mehrapur. Atlas Honda Motorcycle Trooper at Mat. Aimba Akhtiar 3S Dealer. Aashiq Honda Motors Mehrapur. Jite nai motorcycle ji sale. कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: Mehran Iron Store Halani Wholesale Depot, a name to be trusted.
3: Sariya Garden Tier Angle Channel Patti Lohi Darwaza Silver Ja Chong Cement Reti Crash Ai Rang Wagera Bazar Ka Bariya Dastiyab Ahe
2: Hane Yachu Mehran Iron Store Nazd Baloch Petrol Pump National Highway Halani
3: Rabte Lai Proprietor Gulam Nabi Mughal 0300-320-04372 Ai 0242-460100
4: सिंध डेंटल क्लिनिक डॉक्टर रफीक अहमद कंसल्टेंट डेंटल सर्जन बीडीएस आरडीएस सीएनओ सीआरथो एचएसए इस्लामाबाद असावट बगैर तकलीफ जे दंद कढ्या आई नवा दंद लगाया वइदा आहिन हर कम जदीद टेक्नोलॉजी सा कयो विदो आहे जरासीम खा पाक औजार वक्त सुबह 8 वगे खा मझंद 1 वगे ताई पतो नज़्द गुल होटल हालाणी राप्ते जे लाए 0351638088
5: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन दिहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिए जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
6: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बे डरंदी
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
0: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03019155724

0: ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

0: It's 11 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज. आप सुन रहे थे
3: फील्ड मार्शल सिद्धार्थ मुरीद चौहान. अमेरिका हैकरों को बिन मुल्कन की जंग न हुई पर बिन नजरियन में फैसला थी जंग हुई. 7 मई के विच वारदात का 10 मई तई दुश्मन असाजे कौमी वकार के आजमाने की नाकाम कोशिश कई. मई 2025 की जंग का ओचतो इंदर जंग न हुई. माजी में दुश्मन पाकिस्तान से बेबुनियाद ऐं हथ ठोकिया इल्ज़ाम लॻाइण जी कोशिश कई पर हक़ जी जंग में भारतीय जारा जो मुंहुं टोड़ जवाब ॾिनो वियो. पाकिस्तान दुश्मन खे हर भेरे शिकस्त जो मुंहुं ॾिसणो पियो. ऑपरेशन बनाइल मरसूस खे 1 साल मुकमल थियण ते GHQ में मुनक़िद ख़ासि तक़रीब खे ख़िताब कंदे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर चयो दुश्मन ॼाणे वठे त पाकिस्तान ख़िलाफ़ अॻिते अगराई जा असर इंतिहाई ख़तरनाक ऐं तकलीफ़ ॾींदड़ हूंदा. भारत जो ख़्वाबु आहे त पाकिस्तान खे अस्करी जारियत ऐं सफ़ारती अकेलाई जो निशानो बणाए खिते में ताक़त जो तवाज़ुन तब्दील करे. इहो ख़्वाबु हुन जी कद ऐं सलाहियत खां घणो वधीक आहे जेको पाकिस्तान कॾहिं बि कामयाब थियण न ॾींदो. पैदा मज़ालनि ऐं पाक फिज़ाइन जे शाहिननि दुश्मन जे 26 खां वधीक फ़ौजी हथकनि खे कामयाबीअ सां निशानो बणायो. अवाम ऐं क़ौमी क़यादत जो पैगाम आहे त मुल्क ख़ुदमुख़्तियारी सरहदी सलामत ऐं क़ौमी वक़ार ते को बि ठाह क़ाबिल क़बूल नाहे. भारत जंग जे नतीजे में थियल जानी ऐं माली नुक़सान जी क़ीमत ईंदड़ वक़्तनि ताईं अदा कंदो रहंदो. हाकी जी जंग में भारत जी प्रतनाक शिकस्त खे 1 साल मुकमल. अॼु समूरे मुल्क में फतह जशन मल्हायो पियो वञे. GHQ रावलपिंडी में शानदार तकरीब. चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस एंड फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी तकरीब में मेहमान ख़ासि तौर शिरकत. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बावर सिंधु ऐं नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ जे शहीदनि जी यादगार ते हाज़िरी. गुलदस्तो रखियो ऐं फाते ख़्वानी कई आहे. SPR पारां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे त क़ौम जी हिमायत सां हथियारबंद फ़ौज सभिनी अंदरूनी ऐं ॿाहिरि चैलेंजनि खे मुंहुं ॾियण लाइ मुकमल तौर तयार आहे. जंग में फतह हथियारबंद फ़ौज जी तयारी, चाह ऐं पेशेवराना सलाहियत जो सबूत आहे. हक़ जी जंग में कामयाबी अवाम जो हथियारबंद फ़ौज जे इतमाद खे मज़बूत कयो आहे.

भारत खिलाफ ऑपरेशन मेरकैक की कामयाबी के एक साल मुकम्मल थियण ते सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो कौम के वाधायूं। सदर आसिफ अली ज़रदारी चो पाकिस्तान अमन पसंद रियासत है पर हर जहाज़ जो भरपूर जवाब दियण भी जानू था। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की क्यादत में पाक फौज दुश्मन के मुंह तोड़ जवाब दिनो। भारत के गैर कानूनी कब्जे हेठ फलारल कश्मीर जो मसलो ठहराने मुताबिक हल थन घुर्जे। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के इखलाकी सफारती हिमायत जारी रख। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पैं पैगाम में चया है दुश्मन खिलाफ कामयाबी ते अल्लाह ताला के बेशुमार नियमत एहसान ला सजदो करण जो ढी है। अज अस उन अजम हिम्मत ए साबित कदमी की याद क्यों पा जो पाकिस्तान आजमाइश के वक्त में डिखारी ए दुश्मन के जबरदस्त शिकस्त दिनी। भारत खिलाफ हक की जंग में कामयाबी के एक साल मुकम्मल थियण ते पीपल्स पार्टी कराची अज सीबीओ वट शानदार तकरीब। वड़े वजीर मुअत्तल शाह खिताब करे चो पाकिस्तान हक की जंग में दुश्मन के बर्तनाक शिकस्त दिनी। भारत सदाई पाकिस्तान से कूड़ा इल्जाम लगाई रो है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है खिते में अमन तुड़े इस्तकाम चाहे तो। सदर आसिफ अली ज़रदारी शहीद बेनज़ीर भुट्टो चीन का मिज़ाइल टेक्नोलॉजी वरती। पाकिस्तान या मिज़ाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर कुछ ही कलाक में भारत के शिकस्त दिनी। भारत के पैन जहाजन से बड़ो नाज हो पाकिस्तान उ जहाज किराए तबाह कर छाया। अज पाकिस्तान खिते जो अहम मुल्क बण चुको है। अमेरिके हक में कामयाबी की खुशी में गवर्नर हाउस में भी शानदार तकरीब थी। भारत के इबरतनाक शिकस्त दींदड़ पाक फौज के भेटा पेश कई वही।

0: ईरानी आयल टैंकर्स के निशानो बनाया वियो त खिते में अमरीकी ठिकाणनि खे निशानो बणाईंदासीं। ईरान जे पासदारनि इनकलाब अमरीका खे सख़्त वार्निंग जारी करे छॾी। IRR जे सी एरो स्पेस फोर्स जे कमांडर चयो त ईरान जा मिज़ाइल ऐं जदीद ड्रोन मुकमल तौर ते तयार आहिनि, कंहिं बि जारहाने क़दम जो फौरी जवाब ॾियण जी सलाहियत रखनि था। अमरीकी परडेही वज़ीर मार्को रूबियो ऐं अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ जे मियामी में कतर जे वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी सां मुलाक़ात। ईरान सां जंगबंदी ऐं
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

हम लोग फैजाले के बाद में सॉन्ग, जैसा कि आपने सुना, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है उनका, न्यू सॉन्ग आया था, तो मैंने सोचा कोई भी सॉन्ग मैं सुनती हूँ तो हमेशा आप लोगों के साथ ही कोई भी नया सॉन्ग होता है जो मैं अकेले नहीं सुन रही होती, तो ऐसा ही आज भी है कि मैंने उनका सॉन्ग आपके साथ प्ले किया था।

तो मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग अभी तक उठे नहीं, आप लोगों की अभी तक सुबह नहीं हुई, तो ऐसा ना करें, जल्दी जल्दी उठें और टाइम कम रह जाता है हमारे पास बात करने के लिए। तो फिर आप लोग मुझे बोल रहे होते हैं कि यार अभी टाइम जो है बहुत कम है, आप सॉन्ग प्ले नहीं करती, तो आप लोगों की शिकायतें बढ़ जाती हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के तरीके से कोई शिकायत बढ़े, तो आपने क्या करना है, मुझे टाइमली ज्वाइन कर लेना है और टाइमली मुझसे बात कर लेनी।

0: क्योंकि आज हम बहुत सारे सॉन्ग्स हमारे पास हैं मौजूद जो कि हम सुनने वाले हैं। अच्छा, हमारे पास एक मैसेज पे भी ज्वाइन करते हैं हमारे लिसनर, वो कहते हैं कि देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद हैं। कहते हैं शक्कर से, सना जी क्या हाल है? अमजद अली खोरखनी वसान कॉटन रोड़ी, आपकी आवाज ही है जी, आपका आवाज ही है जी। क्या मतलब, समझी नहीं मैं आपकी बात, आप दोबारा मुझे सही से लिख के बताएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। सॉरी मैं आपकी बात नहीं समझी, तो आप मुझे बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं, जब तक आप मुझे बताएं ताकि मैं समझूं आपका मैसेज। और जब तक हम यहाँ पर चलते हैं एक छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ, लेकिन जैसे ही जाएंगे वैसे ही वापस आ जाएंगे और रहिएगा मेरे साथ, कहीं जाइएगा नहीं।
1: This time check is brought to you by It's 11:30 AM This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream Kudrati Jizan sa tayar kayal Jekade Kudrati Nikhar Saaf Naram Ai Roshan Chehro Heme Diamond Glow Bleach Cream
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-96-8851
1: दिस प्रोग्राम इज़ ब्रॉट टू यू बाय
2: बैंकल हबीब रिश्ता भरोसे का
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हाँ अदा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

तो जी ये भी देख लेते हैं हमारे साथ मौजूद कौन कौन हैं और कौन हमें ज्वाइन करता है. हमें ज्वाइन करते हैं गुलाम कादिर बटी फेसबुक पे हमें ज्वाइन करते हैं और कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी, आपका प्रोग्राम तमाम बेहतरीन है फ्रॉम मेट्रियाडी से, प्लीज सॉन्ग दीवानगी. अच्छा जी, जरूर हम सॉन्ग सुनाएंगे आपको, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया. अगर आपने सॉन्ग बताया तो एक जवाब का रिप्लाई भी कर देते तो क्या ही बात थी और पता चल जाता कि आपका जवाब ठीक है या नहीं. खैर, आप फर्स्ट टाइम मेरे पास आए हैं और ऐसे कैसे हम आपको जाने दें. तो आपने मुझे ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा. ऐसी आओ बात करें, मैं आपने हर संडे मुझे ज्वाइन करते रहना, सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक रहता है आपका और मेरा साथ. आओ बात करें मैं तो जी जरूर सुनाएंगे आपके पसंद का सॉन्ग भी. और उसके अलावा देख लेते हैं कि हमारे साथ मशहूर अहमद हमें सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि आरजे सना जी, सवाल का जवाब है चम्मच. और ओके जी, और जी जी जरूर, आपने मुझे सॉन्ग पहले ही बताया था, हमने आपका सॉन्ग प्ले कर दिया था. अभी भी अगर आपको कोई फरमाइश है जो कि फायज़ अली की आवाज़ के अलावा कोई सॉन्ग है तो वो भी आप मुझे टाइप करते हैं. जवाब ठीक होगा तो हम जरूर आपका सॉन्ग प्ले कर देंगे और ताकि आप समझ जाइएगा कि आपका जवाब बिल्कुल ठीक है. अगर प्ले ना करें तो समझ जाएगा जवाब ठीक नहीं है. अच्छा जी, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं वही दुन्नड़. वही दुन्नड़ कहते हैं जवाब बर्तन सॉन्ग. जवाब बर्तन सांग, मेरा बाबू छेल छबीला मैं तो नाचूंगी. अच्छा जी, जरूर आपने जो सॉन्ग बताया है और अगर आपका जवाब ठीक होगा तो ये सॉन्ग प्ले हो जाएगा. आपने करना है लास्ट तक, एंड तक, मतलब वेट, और देख लेते हैं कि आपका सॉन्ग प्ले हो जाएगा.

0: नहीं सुना उसको मैं सवाल, जिसने मेरा सवाल नहीं सुना उसको मैं सवाल अपना बताती जाती हूँ। तो सवाल मेरा यही है कि आपने मुझे बताना है कि भाई वो क्या चीज़ है जो हम खाने के लिए खरीदते हैं मगर उसे खा नहीं पाते। ओके जी, तो जब तक आप लोग जवाब दें, जब तक हम लोग ब्रेक से वापस आते हैं, वापस आके करेंगे दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, ये सॉन्ग प्ले करेंगे। तो जी सुनने के लिए इंतजार करिए और रहिए मेरे साथ, हम भी हम चलते छोटे से शो कमर्शियल ब्रेक की तरफ।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल,
2: मीडिया की जानिब से भी अपने तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी गई है।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एटमाट, अइम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिला आसिम हुसैन आराई, 0307359210।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेट
5: नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: अच्छा, जब हम लोग न्यूज से वापस आएंगे, न्यूज से वापस आने के बाद यार मैं एक और अपना सवाल आप लोगों से पूछूंगी, इसका जवाब आपने मुझे देना है कि इसका हल मैं कैसे निकालूं। तो जी यहाँ पर टाइम हो गया है हमारे न्यूज ब्रेक के, जब जाने का, वापस आएंगे, वापस आके करते हैं बाकी की बातें, तो रोइएगा मेरे साथ।
1: It's 12 PM. This time check is brought to you by
2: Michael Habib. Rishta Bharose Ka.
3: Moro.
4: Noshehro.
3: Mirpur Khas.
4: Larkana.
3: Sakhar.
4: Goonj Rahi Hai Har Jagah Par.
3: Sindh Ki Awaaz.
4: GA FM 88 Network.
5: Ab aap sunenge GA FM Network Par KTN News.
6: सूफी का एतमाद लिए
7: आइस बॉक्स ठंडक या एकम चेरी हेयर को
8: गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान।
9: गिब्स पास्ता।
10: इतना एसी चल रहा है, आपको बिल की टेंशन नहीं है, आपको बिल की टेंशन नहीं है।
11: एआई वाला स्मार्ट एसी, लो बिल मोड चिल माय डियर।
12: दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
13: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड।

0: अकबरी जंग रुगो बिन मुल्कन की जंग न हुई पर बिन नजरियन में फैसलाती जंग हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो ऑपरेशन बैनर मुड़स की कामयाबी के साल पूरो थियण से जीएचक्यू में कोठायल तकरीब के खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चो तो अकबरी जंग 7 मई की विच वाई रात का 10 मई ते दुश्मन असाजे कौमी वकार के आजमाइण की नाकाम कोशिश कई।
1: 4 बजते ही सारे सिस्टम हैंग, दिमाग, मूड और ये दोस्त भी थोड़ा लैग कर रहा है।
0: तो इंदर जंग न हुई, माज में भी दुश्मन पाकिस्तान ते बेबुनियाद हथ तो क्या इल्जाम लगाने की कोशिश कई पर हक की जंग में भारत जारत की मुंह तोड़ जवाब दिनों पे। पाकिस्तान दुश्मन के हर भेरे शिकस्त जो मुंह दिसणो पो। ऑपरेशन बनाल मरसूस के एक साल मुकम्मल थियण से जीएचक्यू में मुनद खास तकरीब के खिताब कर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चो दुश्मन जानी वे तो पाकिस्तान खिलाफ अगते अगराई का असर इनता ही खतरनाक ए तकलीफ दींदड़ हूं। भारत जो ख्वाब है तो पाकिस्तान की अस्करी जारत ए सफारती अखिलाई जो निशानो बनाए खिते में ताकत जो तवाजुन तब्दील करे। यो ख्वाब उन कद ए सलाहत का घणो वधीक है जो को पाकिस्तान कदें भी कामयाब थे न डींदो। फतेह मिसाइलन ए पाक फिजाया के शाहिन दुश्मन के 26 का वधीक फौजी हथन के कामयाबी से निशानो बनाया। आवाम ए कौमी क़यादत जो पैगाम है तो मुल्की खुदमुख्तियारी सरहदी सलामती और कौमी वकार से को भी ठा काबिले कबूल ना है। भारत जंग नतीजे में थियल जानी और माली नुकसान की कीमत ईंदड़ वक्त तई अदा कंदो रहंदो।

0: हक जी जंग में भारत जी प्रतनाक शिकस्त के एक साल मुकम्मल अज समूरे मुल्क में फतेह जश्न मल्हायो पियो वञे। जीएचक्यू रावलपिंडी में शानदार तकरीब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस फील्ड मार्शल सितासम मुनीर की तकरीब में मेहमान खास तौर शिरकत। फील्ड मार्शल सितासम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु एंड नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ शहीद यादगार से हाजिरी गुलदस्तो रखियो ए फातह खुआनी कई। आईएसपीआर पारा जारी कल बयान में चयो है तो कौम की हिमायत से हथियारबंद फौज सभी अंदरूनी बाहरी चैलेंजन के मुंह डेण लाय मुकम्मल तौर से तैयार है। जंग में फतह हथियारबंद फौज की तैयारी चाह ए पेशावरानी सलाहत जो सबूत है। अगली जंग में कामयाबी अवाम जो हथियारबंद फौज के एतमाद के मजबूत किया है। भारत खिलाफ ऑपरेशन मरकयात की कामयाबी के एक साल मुकम्मल थे सदर आसिफ अली जरदारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कौम ए पाक फौज के वाधायू डी व्यून। सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान अमन पसंद रियासत है पर हर जारियत जो भरपूर जवाब दियण बजाणो था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क्यादत में पाक फौज दुश्मन के मुंह तोड़ जवाब दिनों। भारत के गैर मन कानूनी कब्जे हेठ वाल कश्मीर जो मसलो ठहराने मुताबिक हल थन घुर्जे। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की इखलाकी ए सफारती हिमायत जारी रख। वजीर आजम शहबाज शरीफ पैं पैगाम में चया दुश्मन खिलाफ कामयाबी अल्लाह तला की बेशुमार नेमतन एहसासन सजदो कर ढी है। अज अस उन आजम हिम्मत ए साबित कदमी के याद कर रहा हूं जहां पाकिस्तान आजमाइश के वक्त में दिखारी या दुश्मन के जबरदस्त शिकस्त दिनी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
4: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधिक राबते जे लाइ 03385569 03003385569।
5: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो? हाने वक्त आहे चमकण जो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो। पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए हुजे हीरो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज़।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0606-1623-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

तो जी सुन रहे थे यहाँ पर हम लोग एक सॉन्ग जो नुसरत फतेह अली का आवाज में था, तो जी बहुत अच्छा सॉन्ग था। कौन ज्वाइन करते हैं इसके बाद, तो हमारे पास बहुत सारे सॉन्ग मौजूद हैं सुनने के लिए।

शमन अली मिराली की आवाज में सॉन्ग जो कि जिसकी भी आवाज है जिसकी भी पसंदीदा सॉन्ग चलते जा रहे हैं वो समझते जाएं कि भाई इनके जवाब जो बिल्कुल ठीक हैं, जो जो आपने मुझे जवाब दिए हैं वो उसके आंसर बिल्कुल ठीक हैं, तो उनकी ये सॉन्ग प्ले करने लगती हूँ मैं सारे। तो एक और सॉन्ग मैंने कर दिया है प्ले, तो सुनते हैं इस सॉन्ग को भी।

जी सुन रहे थे जैसा कि हम लोग एक और सॉन्ग के आने का करो वादा खपाओगे गाँव में, तो जी जिसका ये फरमाइशी सॉन्ग था और जिसने ये जवाब दिया था तो एक ने उनको पता चल गया होगा उन्होंने मेरा जवाब बिल्कुल ठीक दिया है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अगर आपने मुझे जवाब ठीक दिया है तो सॉन्ग मैंने प्ले किया है तो वो समझ गए होंगे वैसे ही। तो जी यहाँ पर टाइम होता है हमारे पास एक और छोटे छोटे कमर्शियल ब्रेक जब जाने करके, जैसे ही वापस आएंगे वापस आके करेंगे एक और सॉन्ग प्ले किसी और के राइट आंसर पर। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी जवाब दें मेरे सवाल का, फिर मैं इस सॉन्ग के बाद ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि राइट आंसर कौन सा था। लेकिन आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको रिपीट कर दूंगी क्योंकि सॉन्ग तो मैं प्ले करती जा रही हूँ, तो यकीनन आप लोग समझ गए होंगे। और मैं फिर भी ब्रेक से वापस आने के बाद मैं अपना राइट आंसर आपको बता दूंगी कि राइट आंसर क्या था जब भी मैंने ये सॉन्ग्स प्ले किए हैं। तो टाइम होता है यहाँ पर हमारे पास ब्रेक की तरफ जाने का, चलें चलते हैं ब्रेक की तरफ और वापस आएंगे तो वापस आके मैं बताऊंगी। और जाते जाते मैं एक और देख लेते हैं कि हमारे साथ अभी कौन से लिसनर मौजूद हैं जो न्यू हमें ज्वाइन किया, जिसने देख लेते हैं फिर उसके बाद जाएंगे यार हम ब्रेक पर। अच्छा हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप कुमार, कहते हैं गोट बाबू वेरो थरपारकर से, दिलीप कुमार मेघवाड़ नोल राय और दानिश कुमार और सूरज

0: गुल, शंकर लाल और शो लाजवाब है. थैंक यू सो मच. दिलीप कुमार, आपने मुझे ज्वाइन किया. ऐसे ही हर संडे आपने मुझे ज्वाइन करते रहना है. और जैसा कि आपका और मेरा साथ हमेशा रहता है संडे संडे ओनली सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक, तो ऐसे ही आपने आज भी मेरे साथ रहना है पूरे पूरे 1 बजे तक. तो अभी यहाँ पर टाइम हो गया बस छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जाने का. वापस आएंगे, वापस आके करेंगे बाकी की बातें. तो रहिएगा मेरे साथ.
1: It's 12:30 p.m. This time check is brought to you by
2: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hemme Diamond Glow Bleach Cream.
3: सिंध डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर रफीक अहमद कंसल्टेंट डेंटल सर्जन, BDS, RDS, CNO, CRTHO, HSA इस्लामाबाद. असां वटि बगैर तकलीफ़ जे दंद कढ़िया ऐं नवां दंद लॻाया वेंदा आहिनि. हर कम जदीद टेक्नोलॉजीअ सां कयो वेंदो आहे. जरासीम खां पाक औज़ार. वक़्तु सुबुह 8 वॻे खां मंझंदि 1 वॻे ताईं. पतो नज़्द गुल होटल हालाणी. राब्ते जे लाइ 0351-63-088.
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन, MA, DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद. होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह. हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि. हर जुमे, छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो. यादि रखंदा, मरीज़नि खे दवा स्टोर तां वठणी पवंदी. माहिरे अमराज़, नक, कन, गलो, पुराणो नज़लो, निछो, मथे जो सूर, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहण, कन जो सूर, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालिज, खंघि, TB, मादे जी अल्सर, मादे जी जलन, दिली जो वधण, जिगर जा मर्ज़, हेपाटाइटस BC, गुर्दे जी पथरी, मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो. गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट, फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु, मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधणु, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो. राब्ते लाइ 0301-2196-851.
5: This program is brought to you by
6: Bank Al Habib, रिश्ता भरोसे का.
7: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में. डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो. दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
8: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड.
9: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि.
8: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालाणी.
9: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 ऐं 0242460100.
10: अस्सलाम वालेकुम अदा.
11: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
10: अदा नओं दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
11: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
10: न अदा.
8: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई. कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे.
10: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
11: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे.
10: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो.
8: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर.
11: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी,
12: 03013992836.
13: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है. सुनते रहो जी FM 94.

तो जी सुन रहे थे यहाँ पर हम लोग एक और फरमाइशी सॉन्ग, क्योंकि जिसने जवाब राइट दिया था तो उसका ये सॉन्ग भी प्ले करना जरूरी था, तो सुन चुके हैं हम लोग ये सॉन्ग। और उसके बाद एक और सॉन्ग हमारे पास है वो जो मैं लास्ट में प्ले करती जाऊंगी आप सबके लिए। तो देख लेते हैं एक नज़र फेसबुक पर भी, ये फेसबुक पर हमारे साथ कौन मौजूद हैं।

हमारे साथ रमेश कुमार कोहली मौजूद हैं, गॉट जगी जो धड़कान, रमेश कुमार और केवल कुमार और हरेश कुमार, मुकेश कुमार। ओके जी, ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सारे मेरे साथ मौजूद होते हैं और आपकी फैमिली वाले भी, और आप जो नाम बता रहे होते हैं हमें ज्वाइन कर चुके होते हैं या वो भी मुझे सुन रहे होते हैं, तो ऐसे ही अच्छा लग रहा होता है। तो ऐसे आपने हमेशा संडे संडे मेरे साथ रहना है, आओ बात करें, बात करनी है, जमा कर लेनी है पूरे हफ्ते की बातें और मेरे साथ करनी है। जब मैं आपके साथ आती हूँ सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और मुझे ज्वाइन करने के लिए 8881 पे इसके लिए आप मुझे SMS कर सकते हैं, और लाइव फेसबुक पे कमेंट करने के लिए आप फेसबुक ऑन करके GFM88 का पेज आपने ओपन कर लेना, मेरे नाम का फ्लैट आपको दिख जाता है। आओ बात करें वितारजी सना के साथ, दिल की बात, खुशी की बात, हर बात यहाँ होती है। तो आपने करनी होती है मुझसे बहुत सारी बातें, लेकिन आप लोग तो नींद से ही इतनी देर से उठ रहे होते हैं जिसकी वजह से आप लोग मुझसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। अच्छा जी, अब्दुल रज़ाक का मैसेज अभी रिसीव होता है, कहते हैं फौजिया सुन रखी ये सॉन्ग।

अच्छा जी, मसरूर अहमद ने एक पोएट्री भेजी है और वो पोएट्री बहुत अच्छी है, जो मुझे लग रहा है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसको रीड आउट करूँ। तो जी कर लेते हैं रीड आउट। और कहते हैं कि जो बदल जाए वो यार कैसा, जो बदल जाए वो यार कैसा, जो छोड़ जाए वो साथ कैसा। लोग कहते हैं तुझे फिर से प्यार हो, लोग कहते हैं तुझे फिर से प्यार हो जाए, लेकिन जब फिर से हो जाए वो प्यार कैसा। बिल्कुल ऐसा ही है ना, दोबारा से वो प्यार कैसे हो सकता है जो एक दफ़ा हो जाए। बहुत अच्छी मसरूर अहमद आपने पोएट्री भेजी यार। लेकिन अभी जो मेरा सवाल था, मेरा सवाल ये था कि आप लोग मुझे बताएं कि मेरा दिल बहुत उदास है और बहुत ज़्यादा ना, आज बहुत ज़्यादा उदास हो रहा है मेरा दिल, फिर भी मैं आप लोगों को देखें हंसा रही हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ और आप लोग मेरे साथ बात ही नहीं कर रहे, ना मुझे कुछ बता रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ अभी, मुझे बस दुख हो रहा है बहुत कि आप लोग तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे होते और मेरा दिल बहुत ज़्यादा। इसके लिए क्या हाल है मैं

0: ए बाजी ओ बाजी, हमारी फैमिली आपके लिए खुदा से सेहत की दुआ मांग रहे हैं। सदाकत हुसैन मीरानी साहब, बजर शाह मियानी सखर, थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए दुआ मांग रहे हैं। सदाकत हुसैन, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे लिए दुआ करते हैं। रियली दिल से कह रही हूँ कि बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे लिए दुआ करते हैं, और इसी दुआ की वजह से शायद कि आज मतलब इतने दुख और दर्द के बाद और इतने दिल उदास के बाद भी मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। आप लोगों की दुआ की वजह से ही दुआ इंसान को कहाँ से कहाँ तक ले जाती है, तो अच्छा लगता है कि आप लोगों ने मेरे लिए दुआ की है। प्लीज
1: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
3: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नस्लन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
5: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
6: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

0: Samsin nadam yemelijit ka
1: ऐसिन की लहरों के संग रवा दवा यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: मैं आई लखियो या सॉन्ग चलाए मैं आई लकी हूँ. अच्छा लेकिन ये कौन सा सॉन्ग है मुझे तो नाम ही नहीं समझ आ रहा है कि आपने ये क्या नाम लिख के भेजा है मुझे जेबुलनिसा ये क्या नाम लिख के भेजा है मैं नहीं समझ पा रही. आप ज़रूर मैंने अपने पास की सेव कर लिया है लेकिन नेक्स्ट संडे ज़रूर मैं आपका सॉन्ग प्ले करूँगी लेकिन इस शर्त पे जब आप मेरे सवाल का जवाब मुझे टाइमली देंगी और मेरे जवाब के साथ ही आप अपने सॉन्ग का नाम लिख के भेजेंगी. चाहे आप यही नाम लिख के मुझे अपने सवाल के जवाब के साथ भेज दें अगर मैं आपका सॉन्ग प्ले कर देती हूँ आपका सॉन्ग प्ले हो जाता है तो आप समझ जाइएगा कि बिल्कुल जो है ना ये आपका जवाब ठीक है. लेकिन अगर सॉन्ग आपका प्ले नहीं होता तो उसका मतलब कि आपका जवाब गलत है. लेकिन आपने आज मुझे ज्वाइन किया बहुत अच्छा लग रहा है. टाइम बहुत ही कम है और यहाँ सॉन्ग हमारा प्ले लग चुका है जो कि लास्ट में एक लिसनर का सॉन्ग है और उसके अलावा डेडिकेट तो सबको ही होता है सबके लिए सुनते हैं ये सॉन्ग डेडिकेट मैं सबको करने इसलिए लास्ट में प्ले कर रही हूँ और बहुत अच्छा लगा क्या मेरा सेगमेंट भी बहुत सारे लोगों ने विन भी किया है जीते भी हैं मजे मजे के सॉन्ग भी सुने हैं और उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अभी जलोरी से खालिक लशारी सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं चम्मच. अच्छा जी आपका जवाब बिल्कुल ठीक है सवाल का जवाब ही चम्मच है लेकिन आपने सॉन्ग नहीं बताया और लेट हो गए हैं कोई मसला नहीं लेकिन नेक्स्ट संडे आपने जलोड़ी से खालिक लशारी आपने मुझे टाइमली ज्वाइन करना है जैसे आप हमेशा करते हैं ऐसे ही नेक्स्ट संडे भी आपने मुझे टाइमली ज्वाइन करना है और उसके अलावा जो जो लेट हो जाता है जो लेट आता है मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए सॉन्ग निकल जाते हैं मजे मजे की बातें रह जाती हैं तो टाइमली आपने मुझे ज्वाइन कर लेना है और जल्दी उठने की आदत डाल लेनी है. तो जी जब तक यहाँ पर एक और हम लोग सॉन्ग सुनेंगे लास्ट में जो प्ले करते जाऊंगी मैं आप सबके लिए.

अच्छा जी, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं कि यहाँ पर एक और हमें फेसबुक पे ज्वाइन किया है जाने आरिफ बलोच ने, और जो कि पोएट्री भेजी है, मतलब पोएट्री क्या, एक शेर ऐसा कोर्स भेजा है उन्होंने जो जिंदगी पर मबनी है। ये प्ले, ये सुनते हैं, ये मैं रिट आउट करती हूँ, उसके बाद हम सॉन्ग को प्ले करेंगे। तो जी, जाने आरिफ बलोच कहते हैं कि मिट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। गलत होकर खुद को सही साबित करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना सही हो के भी खुद को सही साबित करना होता है। यार क्या बात की है जाने आरिफ बलोच, आपने बहुत ही ज़्यादा डीपली बात की है, बहुत ही अच्छी और अच्छा कोट से ये जो हमारी ज़िंदगी में मबनी है आजकल, और मेरा दिल वाकई में बहुत उदास था और इसी बात सुन के मैं आपको बता नहीं सकती कि ऐसा क्या क्या मतलब हो जाता है ना यार, पता ही नहीं चल रहा होता। तो जी बस सही है, और थैंक यू कि आप लोग मेरे साथ मौजूद रहते हैं, और ऐसे ही हर संडे आप लोग मेरे साथ ज्वाइन करते रहना है मुझे सुबह 10-11 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहता है आपका मेरे साथ। और मुझे ज्वाइन करने के लिए 1 PSKR लिखे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और जो मुझे लाइव कमेंट करना चाहते हैं फेसबुक पे, तो आपने कमेंट करने के लिए आपने सिंपल फेसबुक ऑन करना, GFM का पेज ओपन कर लेना है, आओ बात करें। फिलहाल आपको मेरे नाम को दिख जाता है वितार्जी सना के साथ, दिल की एक बात, खुशी की बात, हर बात यहाँ होती है तो साथ में ही होते हैं, तो आपने क्या करना है, साथ में ज्वाइन रहना है मेरे। तो जी यहाँ पर टाइम होता है अल्लाह हाफिज़ टाटा बाय बाय करने का, तो जी मिलेंगे एक अगले हफ्ते में एक नए सेगमेंट के साथ, एक नए सवाल के साथ। दुआ में याद रखिएगा, मेरी भी दुआ में हमेशा आप लोग मौजूद हैं, और ये सॉन्ग मैंने लास्ट में कर दिया है प्ले जो कि हम लोग सुनते हैं। ओके जी, सुनते हैं सॉन्ग को, जब तक रखना है हमने बहुत सारा ख्याल, अल्लाह।

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: Bankal Habib, Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News
3: 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज.
5: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की

0: 2008 2016 और 2019 के नाम वाकयात यानी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस इस बात की दलील है कि हिंदुस्तान वाली में भी इल्जाम तराशी मुबालगा आरई जंगी जुनून और महदूद जहीरियत के गुमराह उन सब को देंगे पाकिस्तान पर नाजायज जंग मुसल्लत करने और ताकत के जोन में तंग नजर और खलील मुद्दत सियासी वाली मकासद हासिल करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मोहब्बत हक महज दो ममालिक या वाद के दरमियान लड़ी जाने वाली रवायती जंग न थी बल्कि दरहकीकत ये दोनों रियाद के दरमियान एक फैसलन मुआका था जिसमें अल्लाह फजल से हक फतायाब और बातिल हजीमत से दोचार हुआ। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के सिर्फ एक मुतालबा है कि वो हिंदुस्तान की इमामत पर फितना अल-ख्वारिज और फितना अल-हिंदुस्तान की पुष्पनाई ही बंद करे और अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज और समाज गांवों का मुकम्मल खात्मा करे।
1: हकवाई जंग रुगो बिन मुल्कन जी जंग न हुई पर बिन नजरियन में फैसलाती जंग हुई। फील्ड मार्शल सिद आसम मुनीर जो ऑपरेशन बनार मरसूद की कामयाबी के एक साल पूरे थियण ते जीएचक्यू में कोठायल तकरीब के खिताब फील्ड मार्शल सिद आसम मुनीर हकवाई जंग 7 मई के विच वाई रात का 10 मई तई दुश्मन असां जी कौमी वकार के आजमाइण की नाकाम कोशिश कई। मई 2025 जंग का ओचतो इंदर जंग न हुई। माजी में दुश्मन पाकिस्तान से बेबुनियाद हथ ठोकिया इल्जाम लगाने की कोशिश कई पर हक की जंग में भारतीय डायरेक्ट जो मुंह तोड़ जवाब दिनो वो पाकिस्तान के दुश्मन के हर भेरे शिकस्त जो मुंह ऐसण पो। ऑपरेशन बनारन मरसूस के एक साल मुकम्मल थियण से जीएचक्यू में मुनद खास तकरीब के खिताब कन्दे फील्ड मार्शल आसम मुनीर चो दुश्मन जानी वे तो पाकिस्तान खिलाफ अगते अगराई जा असर इन ताई खतरनाक ए तकलीफ दींद हुआ। भारत जो खराब ख्वाब है तो पाकिस्तान की अस्करी जारियत ए सफारती अखलाई जो निशानो बनाए खिते में ताकत जो तवाजन तब्दील करे। यो ख्वाब उन कद ए सलाहियत का घणो वधीक है जो वो पाकिस्तान कदें भी कामयाब थियण न डींद। फतेह मिजाल ने पाक फिजाए के शाइनन दुश्मन के 26 का वधीक फौजी हदफन के कामयाबी से निशानो बनाया। आवाम ए कौमी कायद जो पैगाम है तो मुल्की खुदमुख्तियारी सरदी सलामती कौमी वकार से को भी ठाव कबूल ना है। भारत जंग के नतीजे में थल जानी माली नुकसान की कीमत इंदड़ वक्त तई अदा कंदो रहंदो।

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0302018-00003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बे डरंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
5: 0301-399-2836
4: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1558-724
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: It's 1:15 PM.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

तुम्हारी उम्मीद तो मौजूदों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद तो मौजूदों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सिंजब दंदड़ा सभी समातों के मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। पुरकुलों दो के समंदर चाहतों की बारिश उलास वल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नींद से जाकर जमीन से आसमान तक जिंदगी से मौत तक चाहते दातों गम से खुशी तक दिल से दिल को जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे, सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जनाब आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सखरन मेहरावपुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं। बिल्कुल सुना व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। ये प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के लिए हैं, आप लोगों के हसीन से चेहरे के लिए और आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ आप लोगों को और ज्यादा ब्यूटिफुल खूबसूरत और प्रेटी बनाते हैं। तो बिल्कुल सी खूबसूरतियाँ सिर्फ आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ लड़कियों के लिए खूबसूरतियाँ, बस इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके कार को फॉलो करके आप लड़के हो या फिर लड़कियाँ हो, सारे लोग हसीन और खूबसूरत बन सकते हैं। तो बिल्कुल सी प्रोग्राम व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो में आप तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। हाँ जी भाई, आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ अपना भी तारुफ करवाते हैं सो लिसनर्स फॉर रीजन टेक द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड इंटरटेनिंग एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुनाई होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मुखातिब और यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जितनी भी समाते हमारे साथ मौजूद हैं, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज आ रही है तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। और इसी के साथ साथ जरा अपने हाल चाल भी बताते जाइए सो डियर लिसनर्स, हालत कैसे है आपकी हालत है, उम्मीद शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली हैं। आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक। तो पूरी 3 बजे तक मैं आप लोगों के साथ मौजूद रहूंगी और यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनके क्या ऐसे फायदे हैं और क्या ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जाने, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि अगर आप खूबसूरती हासिल करना चाहते हैं लेकिन आप लोगों को नॉलेज नहीं होती है तो कहते ना हाफ नॉलेज होती है वो हमेशा नुकसान ही पहुंचाती है। तो आप लोगों को भरपूर तरीके से नॉलेज दी जाएगी कि जब आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या डी

स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनका इस्तेमाल किस तरीके कार से करके अपनी खूबसूरती में इजाफा ला सकते हैं. ओके जी, तो रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए हमारे साथ मजे करने के लिए और प्रोग्राम में एंटरटेनमेंट के साथ साथ खूबसूरत होने के लिए भी. ओके जी, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद है जिनके अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं. बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे. बहुत सारी ऐसी अंटियां, अम्मियाएं, खालाएं, बाजियां जो कि भाई अपने काम के दौरान हमें सुन रही होंगे. बहुत सारी ऐसी खवातीन जो कि हमें किचन में सुन रही होंगी लंच बनाने के दौरान. तो बिल्कुल जी, अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए. आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून. साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला. बिकॉज आली रे आली सदर आली बॉस. तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, आगा से प्रोग्राम कर लेते हैं. प्रोग्राम में आगा से प्रोग्राम करते हैं जी एक बहुत ही प्यारे से जो ना कलाम के साथ. तो बहुत ही प्यारा सा कलाम हम प्रोग्राम के स्टार्टिंग में सुनते हैं. उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है. तो बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं White Ish Anti Skin Beauty Show, sponsored by White Ish Beauty Products, Anti Skin Beauty Products.

0: कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8121
1: सिंध डेंटल क्लिनिक डॉक्टर रफीक अहमद कंसल्टेंट डेंटल सर्जन BDS RDS CNO CRTHO HSA इस्लामाबाद असां वटि बग़ैर तकलीफ़ जे ॾंद कढिया ऐं नवां ॾंद लॻाया वेंदा आहिनि हर कम जदीद टेक्नोलॉजीअ सां कयो वेंदो आहे जरासीम खां पाक औज़ार वक़्तु सुबुह 8 वॻे खां मंझंदि 1 वॻे ताईं पतो नज़्द गुल होटल हालाणी राब्ते जे लाइ 0351-6603-088 खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-3883-8559
2: This program is brought to you by
3: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन White Age Beauty Cream

0: मेरा वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेट हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

गए जनाब, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंडी इज गिवन ब्यूटी ह्यू। ओके जनाब, सो इस प्रोग्राम में आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। ओके जी, तो मैंने आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल पूछा है, जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो आज आप मुझे बता रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्किन केयर स्टेप आपको क्या लगता है कि कौन सा है, यानी कि जब आप स्किन केयर ना स्टार्ट करते हैं, स्किन केयर करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो होता है वो आपकी नजर में कौन सा है, ये आज आप मुझे बताएंगे। ठीक है जी, तो जल्दी जल्दी से प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए, आपके मैसेजेस हैं, आप लोगों के कॉमेंट्स हैं जो बिल्कुल मुझे मिल रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। जल्दी जल्दी से पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइए, दोस्तों को मेंशन करते जाइए और उसके साथ साथ शेयरिंग जो है ना वो बढ़ाते जाइए। ओके जी, यहाँ पर आप लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो लोग हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं उनको जरा शामिल प्रोग्राम रख दूं, फिर तसल्ली से आप लोगों को जो है ना व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर अनवर भाई हमारे साथ मौजूद है, अनवर भाई आपको वेलकम करते हैं। लिखते हैं, जिंदगी ने एक दिन मौत से पूछा कि लोग मुझसे मोहब्बत और तुमसे नफरत क्यों करते हैं। मौत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अस्सलाम वालेकुम, तुम एक खूबसूरत झूठ हो और मैं एक कड़वा सच हूँ। अच्छा, क्या बात है। और अनवर भाई मुझे नहीं मिली जी और आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है और व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं, क्या बात है जी। हिदायतुल्लाह अहमदानी हमारे साथ मौजूद है, वेलकम। सनाला ब्रोई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। जाहिद अली बुर्दी हमें सुन रहे हैं, वेलकम जी। मोहम्मद जमान, हेलो। सिराज अहमद हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं, कहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम मीरपुर खास खावटी आयो आया क्रीम जी शाह गाल कजे रमजान कुंभर घर में इस्तेमाल करें पाए। चलें जी, जबरदस्त, अगर आप इस्तेमाल करें तो बिल्कुल ऐसे मुझे बता दिया करें। उसके अलावा तारिक हुसैन लाहौर भाई हमारे साथ मौजूद है, तारिक भाई आपको भी वेलकम, पता नहीं क्या आपने कमेंट में लिख दिया है। और उसके अलावा हैं जी हमारे साथ सिराज, आपने क्या कहा है, बहुत दिनों के बाद आप हमारे शो सुन रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया, वेलकम करते हैं आपको, बस रोजाना आप हमारे प्रोग्राम में आ जाया करें, आप लोगों को खूबसूरती की बातें बताती हूँ और साथ साथ आप लोगों के साथ बातें करती हूँ, तो खूबसूरती की बातें भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल के दौर में देखा जाए तो कौन आप लोगों को इस तरह की बातें बताता होगा जिसमें आप लोगों की खूबसूरती बढ़ेगी और साथ साथ आपकी खूबसूरती जो है ना वो हमेशा प्रोटेक्ट भी रहेगी। और अगर गर्मी के मौसम में जो है ना कई मरतबा लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमने कौन से प्रोडक्ट का इंतखाब करना है और कौन से प्रोडक्ट हम इस्तेमाल सकते हैं गर्मियों का सीजन में खास करके, तो गर्मियों का सीजन जब भी आए तो आप लोगों के जहनों में ये बात आए कि व्हाइट एज वालों की लवली क्रीम मौजूद है मार्केट में। और व्हाइट एज की जो लवली क्रीम है ना, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताते चलूं कि ये व्हाइट एज की जो लवली क्रीम है ये सिर्फ एक लवली क्रीम नहीं है, बल्कि इसके अंदर आप लोगों को सनस्क्रीन भी मिल रही है जो कि आप लोगों को खूबसूरती के साथ साथ आप लोगों को जो है ना वो प्रोटेक्ट भी करने वाला प्रोडक्ट है। अगर आप धूप में काम करते हैं या फिर आपका कोई इस तरह का काम है जो कि आपको बाहर धूप में जाना पड़ता है, या फिर लड़कियां हैं, लड़के हैं जो कि कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, इस तरह की अगर सिचुएशन आपकी जिंदगी में भी चल रही है तो आपने व्हाइट एज की लवली क्रीम का इंतखाब जरूर करना है अपनी जिंदगी के अंदर। रोजाना सुबह और रात अगर आप मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करेंगे, अगर आप चेहरे पर लगाते हैं, गर्दन पर लगाते हैं, हाथों पैरों पर लगाते हैं, तो आप लोगों को जो है ना बहुत ही अच्छे से रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। रेडियंट जनाब अल्ट्रा वाइटामिन के साथ तैयार शुदा है जिसके अंदर आपको विटामिन बी मिलता है, विटामिन 3 मिलता है, विटामिन सी मिलता है और विटामिन ई की ताकत के साथ साथ बहुत सारे ऐसे विटामिन्स जो कि आप लोगों के चेहरे को निखारेंगे और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना देंगे। तो व्हाइट एज की लवली क्रीम जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए है, हर किसी के लिए है, इसे हर एज में आप इस्तेमाल कर सकते, ऐसा नहीं कि भाई एज लिमिट से इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तो आप हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे भी लगा सकते हैं, आप टीनेजर्स भी लगा सकते हैं, बूढ़े भी लगा सकते हैं, जवान भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सही, ये कमाल है व्हाइट एज लवली क्रीम का। इसके साथ साथ अगर बात की जाए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम की, तो बिल्कुल जनाब व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है तो ये जनाब बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है, क्योंकि व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो कि एवोकाडो और एलोवेरा से तैयार शुदा है, ये दोनों चीजें आप लोगों की खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, आपके जल्द को फ्रेश और गोरा बनाती हैं, साथ साथ हर किस्म के नुकसानदार असरा से आपको महफूज रखती हैं, आपके चेहरे पर झुरियां हो, दाग धब्बे हो, इन तमाम चीजों को खत्म करती हैं और आपके चेहरे पर निखार आने के साथ साथ आपके चेहरे की हिफाजत भी करती है। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम अगर आप नाइट क्रीम अच्छी वाली लेना चाहते हैं
अच्छी वाली नाइट क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइट एज की ब्यूटी क्रीम आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको व्हाइट एज का जो है ना वो ब्यूटी सोप भी मिल रहा है, और व्हाइट एज का ब्यूटी सोप आप इस्तेमाल करेंगे साथ साथ, जो लोग अगर सोप नहीं लगाते फेस वॉश लगाते हैं तो वो व्हाइट एज का विटामिन सी का फेस वॉश लगा सकते हैं। बिल्कुल जी, फेस वॉश भी है और सोप भी है, बस पसंद आप लोगों की होगी कि आप क्या इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ साथ व्हाइट एज में और भी मजीद बहुत से प्रोडक्ट है, जैसे कि आप लोगों को डॉक्टर पिंपल का ट्यूब मिल रहा है, और डॉक्टर पिंपल का जो ट्यूब है ना इसकी क्या खास बात है, इसकी खास बात ये है कि इसे वो लोग इस्तेमाल करेंगे जिनके चेहरे पर एक्नीज आ चुके हैं, एक्नीज को खत्म करना चाहते हैं तो डॉक्टर पिंपल का ट्यूब लगाएंगे जो कि व्हाइट एज कंपनी का है। इसी के साथ साथ ये फुल आयुर्वेदिक फार्मूला है, और यानी कि इसके अंदर सारी इस तरह की चीजें ऐड की गई है जो कि आप लोगों की स्किन पर जो ऑयल काफी ज्यादा जमा हो जाता है, या फिर आपके चेहरे पर जो है ना वो एक्नी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, एक्नी भाई हर तरह के एक्नी अगर आपके चेहरे पर है, यानी कि छोटे वाले एक्नी है, मोटे वाले एक्नी है, लाल एक्नी है, या फिर वो गंद वाले एक्नी है, हर तरह के एक्नी का खात्मा कर देगा, क्योंकि इसका नाम ये डॉक्टर पिंपल, कि आपके चेहरे पर जितने भी एक्नी है, जितने भी पिंपल्स हैं, ये सारे खत्म कर देगा, और वो भी गारंटी के साथ है। तो आयुर्वेदिक फार्मूला है, आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। उसके अलावा हाँ जी, तो व्हाइट एज का जो है ना वो लोशन भी मौजूद है, और व्हाइट एज का जो है ना हेयर रिमूवल लोशन भी मौजूद है। ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप आसानी कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं, आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं। और उसके अलावा अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास नंबर है जो है 03-15-799-0595। ओके जी, नंबर डाल कीजिए 03-15-799-0595। ये नंबर आप डायल करेंगे, इस नंबर के ऊपर रابطہ करेंगे और इन्हें बताएंगे कि भाई जान आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और करना चाहते हैं व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स, और जो भी प्रोडक्ट्स आप अवेलेबल कराना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो आप अवेलेबल इजीली करा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से आप अवेलेबल कराते जाइए और मुझे बताइए कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर कौन से प्रोडक्ट मिल रहे हैं और कौन से प्रोडक्ट अभी तक नहीं मिल रहे। तो जल्दी जल्दी से आप इन नंबर्स के ऊपर रابطہ कीजिए और अपने एरिया में अवेलेबल कराइए व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बता रहे हैं कि स्किन केयर जब आप करने लगते हैं तो कौन सा ऐसा स्टेप है जो कि आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, और वो कौन सा स्टेप है आप मुझे बताएंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं जी, नूरे से तुनियो भाई हमारे साथ ही लाड़काना से कहते अधिक गुड आफ्टरनून है, नाइस डे, बहुत शुक्रिया भाई, आपको वेलकम करते हैं। और कहते अधिक सॉन्ग की रिक्वेस्ट है, बिल्कुल जी कोशिश करेंगे, लगाएंगे आपका गाना। दर्दी दिल हमारे साथ मौजूद है, हेलो वालेकुम अस्सलाम प्यारी जान। और उसके अलावा है जी अच्छा अली अकबर ब्रोही भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सकरण से आप हमारा शो सुन रहे हैं, वेलकम जी। और हैं जी शाहनवाज अली खास के लिए वालेकुम अस्सलाम, मरियाम अली जतोई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अदनान नूर हमारे साथ मौजूद है, अदनान आपको भी वेलकम करते हैं जी। और उसके साथ साथ हमारे साथ है

अच्छा ये बीजी इतना मेरे दिमाग के ऊपर चल गया है ना कि बस हर टाइम ये चल रहा है. और साथ साथ अदनान कहते आई थिंक हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही था. और स्मार्ट किशोर भाई कहते हैं हेलो हाय स्मार्ट हाजिर है अपने लबों पर स्माइल आने के लिए अपने लबों पर. चलें ये भी अच्छी बात है. और मोहम्मद समान कहते हैं कि इहा क्रीम डे नाइट लगाए सकजे थी इहा केड़ी वाजे त कयो इन तो इलाही सारा प्रोडक्ट आयन मु समझो कोन तमा केड़ी क्रीम जे बारे में पूछो पया. हिदायतुल्ला कहते हैं बिल्कुल जी गाने एंजॉय कीजिए. हजार खान जदोई हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम हजार भाई. अदनान कहते ओए होए आज इतने अरसे बाद. बस कोशिश यही होती है कि हम जब भी आपको मिलेंगे तो पुराने अंदाज में मिलें. और किशोर भाई कहते हैं आज भी मैं टॉपिक पर बात नहीं कर सकता. क्यों नहीं करते बात आप टॉपिक के ऊपर? क्या करें भाई सवाब मिलता है. और उसके साथ साथ जो इना पैनल की जाने बातें तो बहुत से मैसेजेस हैं पैनल की जाने भी पड़ेंगे और आपके मैसेजेस. लेकिन यहाँ पर गाना है तो मैं सोच रही थी कि जरा हम ये वाला गाना सुन लेते हैं. और गाना बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है. और साथ साथ यहाँ पर आपके मैसेजेस में जल्दी से इसलिए रीड करती जा रही हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि हम 2 बजे के बाद कॉल्स की जाने वाले हैं. कॉलर्स जो हैं वो जरा रेडी हो जाएं. 2 बजे के बाद आप लोगों की कॉल्स होंगी. आप लोगों के साथ बातें करेंगे और आप लोगों से पूछेंगे बताइए जरा अगर आप स्किन केयर करने लगते हैं तो कौन सा ऐसा स्टेप है जो कि आप लोगों का आपको लगता है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किन केयर में जो है ना ये स्टेप है. तो आप जल्दी से जरा इस चीज को समझ लीजिए और कॉल पर आएंगे तो टॉपिक को लास्ट मिनट फॉलो कीजिएगा.

अच्छा हिदायतुल्लाह क्या कह रहे हैं, वैसे तुम इतना क्रीम के बारे में बताती हो कि बंदा बोलता है बस अभी जाएं और वाइट एश का। अच्छा वाइट एश के प्रोडक्ट्स लेकर आए। अच्छा इतना पावर है मेरी बातों में, सच बताए। ओके जी, अरीबा हमें सुन रही हैं। अरीबा हेलो, वेलकम करते हैं आपको। इरम हमारे साथ मौजूद है। इरम आपको वेलकम हो गया, मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर, आपका शो वेरी नाइस है। और वाइट एश ब्यूटी क्रीम आज खरीद करूंगा। ओके बाजी, बिल्कुल जी खरीद कीजिएगा, हमें बताइएगा आपको रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं। और गोठ मोहम्मद तैयब थेबू, हाँ हबीबुल्ला थेबू हमारे साथ है, तमाम जो शो वेरी नाइस आए सलाम तमाम के। वालेकुम अस्सलाम। और ये कशफ कहती है अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं। और कहती आप ही, मैं भी वाइट एश क्रीम एंड फेस वॉश एंड लवली क्रीम लेकर आई हूँ कल मार्केट से, और लगी बहुत मजे की है। और मैं डॉक्टर पिंपल्स वाला ट्यूब भी साथ में लेकर आई हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ऑयली है। आप ही अच्छा किया ना मैंने जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा किया है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा किया आपने।

जी जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद हैं, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइएगा, अच्छी ही ना। और चाचा खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। कहते बेटा सिडो कैसी हैं आप? शो इज गोइंग ओके, शो तो अच्छा जा रहा है, बाकी सुनने वाले ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। और कहते हैं कि बिल्कुल जी, आप कोशिश कीजिएगा कि आप वाइट एश के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो परचेज करें और फिर इस्तेमाल करें और फिर हमें बताएं कि आपको रिजल्ट्स क्या और कैसे मिल रहे हैं। और उसके अलावा जो आपने गाने की फरमाइश कर दी है, ओके जी। और ये हैं प्रिंस अहमद अली रिंद फ्रॉम अहमद आबाद, वालेकुम अस्सलाम पाकिस्तान बागार में, स्वीट शो प्लीज रहमान मुगल का कोई भी गाना प्ले कीजिएगा, आई ट्राई। अच्छा ये कहते हैं सलाम सिदरा मुस्कान, केड़ा हाल आहिन, खुश आयो अदीमा, अवां जो प्रोग्राम वडी शौक सा बुधा पयो, बुधा पई, अच्छा सॉन्ग जरूर प्ले कजो, मां अवां जी दोस्त आए हां, अवां जी भेण सुग्रा जमाली, नंडो अली हसन जमाली आहे, विलेज रईस मोहम्मद हसन जमाली, आशफियाबाद नवाब शाह, प्लीज प्ले अमीरा बेगम मेकू, अच्छा चले मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी, हमारी प्यारी दोस्त सुग्रा जमाली आपके लिए गाना लगाएंगे, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगी, कब करेंगी और कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगी, कौन सा यानी के प्रोडक्ट लगाने वाली है। अच्छा बाबू अदील अबड़ू हमारे साथ मौजूद है, ओके

बहुत ही पहले सा गाना आप इंजॉय करें और साथ साथ प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे पूरी पूरी 3 बजे तक. प्रोग्राम है व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से. ले दें आप न्यूज ब्रेक, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है, वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं, बस आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं, सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग 88.8 FM. सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए.

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: ऑपरेशन पैरानॉर्मल मोड्स जी कामयाबी के साल पूरो थियण ते GHQ में कोठायल तकरीब के खिताब. फील्ड मार्शल सरास मुनीर चयो त हकवर जंग 7 मई जी विच वारी रात खां 10 मई ते दुश्मन असांजे क़ौमी वकार खे आज़माइण जी नाकाम कोशिश कई. मई 2025 जी जंग खां ओचितो ईंदड़ जंग न हुई. माज़ी में बि दुश्मन पाकिस्तान ते बेबुनियाद हथ थोकिया इल्ज़ाम लॻाइण जी कोशिश कई, पर हक़ जी जंग में भारत जारत जी मुंह तोड़ जवाब ॾिनो पियो. पाकिस्तान दुश्मन खे हर भेरे शिकस्त जो मुंहुं ॾिसणो पियो. ऑपरेशन बनारस मरसूस खे हिकु साल मुकमल थियण ते GHQ में मुनक़द ख़ासि तकरीब. मार्शल आसिम मुनीर चयो दुश्मन ॼाणी वठे त पाकिस्तान ख़िलाफ़ अॻिते अगराई जा असर इंतिहाई ख़तरनाक ऐं तकलीफ़ ॾींदड़ हूंदा. भारत जो ख़्वाबु आहे त पाकिस्तान खे अस्करी जारत ऐं सफ़ारती अखिलाई जो निशानो बणाए खिते में ताक़त जो तवाज़ुन तब्दील करे. इहो ख़्वाबु हुन जे कद ऐं सलाहियत खां घणो वधीक आहे, जेको पाकिस्तान कॾहिं बि कामयाब थियण न ॾींदो. फतह मिज़ाइलनि ऐं पाक फिज़ाया जे शाइननि दुश्मन जे 26 खां वधीक फ़ौजी हथनि खे कामयाबीअ सां निशानो पढ़ायो. आवाम ऐं क़ौमी क़यादत जो पैगाम आहे त मुल्की ख़ुदमुख़्तियारी, सरहदी सलामती ऐं क़ौमी वक़ार ते को बि ठाह क़ाबिले क़बूल नाहे. भारत जंग नतीजे में थियल जानी ऐं माली नुक़सान जी क़ीमत ईंदड़ वक़्तनि ताईं अदा कंदो रहंदो.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.
4: उम्मीद के दिए जलते हैं,
5: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन. मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत. प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार. मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला. सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत. केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा. एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज. खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले. तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले. स्टडी टूअर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें. मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234. निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453.
6: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड.
7: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई.
6: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी.
7: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 02424601000.
8: खुशखबरी खुशखबरी, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि. एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर. वधीक राबते जे लाइ 03-85-569.
9: This program is brought to you by
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
10: छा अव्हां जो चहिरो बेजान ऐं डल लॻे थो? हाणे वक़्तु आहे चमकण जो. हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सां कुदरती जुज़न सां तयार कयल, जेका ॾे कुदरती निखार, साफ़ नरम ऐं रोशन चहिरो. पहिरें ई इस्तेमाल में फ़र्क़ महसूस करियो. हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, तव्हां बि चमकायो पंहिंजो चहिरो. जीअं हुजे हीरो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज
9: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 आई तौकीर अहमद 0306-1623-793
10: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ
11: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94
2: इंटरनेशनल पाकिस्तान खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

0: It's 2:30
1: PM. This time check is brought to you by
2: Hemme Diamond Glow Bleach Cream.
1: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by
2: Hemme Diamond Glow Bleach Cream. Jo deep clean kare aur de 4 guna brightness. Chamak aisi diamond skin jaisi. Hemme Diamond Glow Bleach Cream.
3: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर आई सूमर ते सुबह 10 का शाम 5 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन हर जुमे छंछर आई आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन आई औरतन में वजन जो न वधण उनन सबनी बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वने थो राबते लए 0301-96-851
4: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन आई कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
5: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

0: ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस: रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।
1: This program is brought to you by
2: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
3: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
4: न अदा।
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
7: 0301-399-2836।
6: आई मोहम्मद उमेर गोरी, 0319-1550-724।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

सी कॉल्स भी कुछ तमाचो पिक कंदासीं. लुबी असांखे ज्वाइन करे चुकी आहे. लुबी कहती है सलाम अलैकुम सिरु जाने क्या हाल है. मैं भी आपके साथ साथ नाइस शो कोई भी अच्छा सा सिंधी सॉन्ग मेरे नाम कीजिएगा. ओके जी, आज गाने वैसे ही मैंने अच्छे वाले लगाए हैं तो आप बस इंजॉय करते जाइएगा. और उसके साथ साथ पैनल की जाने बातें हैं तो पैनल पर भी काफी मैसेजेस हैं. ओके जी, सो हमारे साथ हैं जी अजादार अहमद फ्रॉम लाड़काना. हाय सिद्रा मुस्कान, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स टू यू अ न्यू शो. सिद्रा, उस दिन आपने ठीक से नहीं पढ़ा था मेरा मैसेज. अच्छा, चलें ये ठीक है, मैं समझ गई सारी बात. हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है. गर्मी आ ना, गर्मी मत चढ़ी वेंदी है, समझो था. और उन खां अलावा असरदार तमाके चौथा भली करे आया और ये लिखते हैं, अर्ज किया है मैं लफ्जों से कैसे बताऊं कि कितनी खास हो तुम. जुदा होकर भी खत्म नहीं होता वो एहसास हो तुम. मेरी हैसियत होती तो तुम्हारी किस्मत संवार देता. एक दिल था जो तुम्हें दे दिया. हजारों भी होते तो तुम पर वार देता. गुलाम शबीर तुनियो हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम कंबर. कहते न्यू शो तो गुड है बहू, सच्ची बताएं बहू. वेलकम करते हैं आपका. और मल्हार अली हमारे साथ है फ्रॉम कराची. कहते फर्स्ट टाइम शामिल हुआ हूँ आपके शो में, सॉन्ग तो सुनाइएगा. ओके, मैं सोच रही थी ये कौन सा गाना है, मैं सर्च करूंगी, मुझे मिल गया तो लगा देंगे, आज नहीं तो कल सही. ठीक है, और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं. थैंक यू जी, थैंक यू. और चाचा खालिद को आपने गाना डेडिकेट किया है. और उसके अलावा चाचा खालिद कहते हैं स्किन केयर में फेस वॉश देन लवली क्रीम नाउ. बाय जी स्किन क्रीम एंड फेस वॉश टॉपिक आंसर. ओके, वेरी नाइस. चाचा को देखिए सारी बातें बताए. ठीक है, आप सीखा करें चाचा से कुछ. अच्छा, ये कश्यप कहते हैं सुनो मेरी तो कॉल लगती ही नहीं है, क्यों भरा, कब से नंबर लगा रही हूँ कॉल लगी नहीं रही है, और कब लगेगी बताओ. तो अब ये मुझे पता होता तो अगते न हो जहाँ. और कहते हैं मेरी सिस्टर अलीजा, फिजा, माविजा एंड अम्मी और भाभी आपका शो सुन रही हैं और आपको सलाम दे रही हैं बहुत सारी. अब दुआ करो हमारी कॉल लग जाए, कल भी नहीं लगी थी, आज भी नहीं लग रही और मुझे बहुत दुख हो रहा है. अब आप ही मेरी दोस्त हैं और सिस्टर बन के रहना. ओके जी, ओके. तमां जो हुकुम अखियुनि ते आई वी गाल त तव्हांजी कॉल लॻी वेंदी अगरि तव्हां ट्राई कंदा. चाचा ख़ालिद कहते मेरी कॉल काश लग जाए, नहीं लगती. हाँ, ये वाक्य है, चाचा खालिद की भी कॉल कभी नहीं लगी है. वैसे मैं चाहूंगी कि आप लोगों की कॉल लग जाए, मजा आएगा. कश्यप से बात करेंगे और उन लोगों से जिनकी कॉल कभी भी नहीं लगी है, तो आप कोशिश करें कभी ना कभी आपकी कॉल लग जाएगी. और ये मैंने अमीरा बेगम की आवाज में गाना लगाया है. ये जो एक हमारी प्यारी लड़की थी ना,

जनाब सो तव्हां जेको आहे न इस्तेमालु कयो पिया डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे एरिया में नथी मिले, तव्हांजे सिटी में नथी मिले, तव्हांजे ॻोठ में नथी मिले, तव्हांजे शहर में नथी मिले, तव्हांजे पाड़े में नथी मिले, त तव्हां डायल कयो 03 15 799 0595 हिन नंबर ते तव्हां कॉन्टेक्ट कयो, इन्हनि खे चओ त तव्हांजे एरिया में अवेलेबल कराइनि डी स्किन ब्यूटी क्रीम, जीअं तव्हां इस्तेमालु कयो ऐं सुहिणा थी वञो। छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे इहा वाइटमिन ई बीट सां तयारु थियल आहे ऐं माइक्रो बीट्स बि हिन में मौजूदु आहिनि, जेका सिर्फ़ ॿ ॾींहं इस्तेमालु कंदा तव्हां, यानी कि ॿ रातूं अगरि तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे सफ़ा हीअं असली वी आई पी रिज़ल्ट ॾींदी। सो तव्हां बि ज़रूरु इस्तेमालु करे ॾिसजो डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे, जेका बिल्कुलु तव्हांजी स्किन खे गोरो जटो बणाए छॾींदी, तव्हांजी स्किन खे सोणो बणाईंदी, तव्हांजी स्किन खे ग्लोइंग बणाईंदी ऐं तव्हां थी वेंदा सफ़ा असली पप्पू। अच्छा डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि मिली रहियो आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां अगरि परचेज कयो था त हुन सां गॾु तव्हां डी स्किन जो फेस वॉश लाज़मी वठिजो, ठीकु आहे। ओके जी, फेस वॉश बि जेको आहे न उहो बि ज़रूरी हूंदो आहे तव्हांजी स्किन जे लाइ, तव्हांजी स्किन केयर जे लाइ, समुझो था।

ओके, दोदा अली हमें सुन रहे हैं। दोदा भाई आपको बहुत शुक्रिया। अदना नूर हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू। नूर सिंतुनियो भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। कहते हैं टॉपिक रात को क्रीम लगाना, ये स्टेप जो है ना बड़ा अच्छा है। ये अच्छा तो आपको लगता है लेकिन इम्पोर्टेंट है या नहीं ये भी आप मुझे जरा बताइए। और उसके साथ साथ हैं जी, अच्छा फिरोज अली ब्रोई भाई हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। वीरू मल मेंगवार हमारे शो सुन रहे हैं, थैंक यू जी। वाई वाई गाने में ओके जी, फेसबुक वाले लोग जो हमारे साथ मौजूद है वो पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कीजिए। इसे ये जो हमारा मैसेज है ना जो हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे या फिर डी स्किन का फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत से लोगों तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए जो बात जरूरी है वो ये कि आपने बस इतना काम करना होता है कि आप हमारी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दिया करें, ठीक है। इससे ये आसानी हो जाती है कि हमारी ये जो पोस्ट है बहुत से लोगों तक पहुंचती है, बहुत से लोग ये चीज जानते हैं और ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की स्किन के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है।

ये वैसे सराइकी में गाना है ना, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा। अच्छा दिलीप कुमार मेघवार भाई हमारे साथ मौजूद है, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया भाई जान। दर्दी दिल कहती हैं कि सबसे पहले चेहरे की सफाई का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जिल्द साफ और रिफ्रेश रहे। बाहर निकलते वक्त सनस्क्रीन जरूर लगाया करें, सोने से पहले मेकअप लाजमी साफ किया करें। ये बिल्कुल सही बात है, कुछ ऐसी टिप्स वाकई होती हैं हमारी जिंदगी में, अगर आप फॉलो नहीं करते हैं या फिर अगर आप उन्हें जरा स्किप कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो आगे जाकर वो तमाम तर चीजें जो है ना वो आप लोगों की स्किन को नुकसान पहुंचा देते हैं। अब जैसे कि कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो रात के टाइम ना फेस वॉश नहीं करते हैं, बस ऐसे ही सो जाते हैं, तो बस ऐसे ही सोना जो होता है ना आपकी जिंदगी में आगे जाकर आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है, क्योंकि जब आप रात का फेस वॉश करते हैं ना तो उससे ये होता है कि आपकी स्किन क्लीन हो जाती है, आपकी स्किन पर जितनी भी डस्ट होती है, पोल्यूशन होती है या फिर जो जम्स वगैरह होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, तो आपकी स्किन जो है ना वो ग्लोइंग हो जाती है। और अगर आप इस्तेमाल करना चाहें डी स्किन का फेस वॉश, उसे इस्तेमाल करें और रात के टाइम लगाएं अपना फेस वॉश जो है ना डी स्किन फेस वॉश से करेंगे, तब आप महसूस करेंगे कि भाई आपकी स्किन जो है ना वो और ज्यादा खूबसूरत होती जा रही है, और ज्यादा ग्लोइंग होती जा रही है, और ज्यादा हसीन होती जा रही है। तो जरूर आप ट्राई करके देखिएगा ताकि आप लोगों की खूबसूरती भी बढ़ती रहे और आप लोगों को भी अच्छा वाला निखार मिले। और अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, देन आपने डायल करना है 03-15-799-0595, ठीक है।

ओके जी, किशोर भाई लिखते हैं कि जिंदगी में मैंने बहुत गलतियां की लेकिन सजा वहां मिली जहां मैं वफादार था. ये थी दुआ. तुम अकेला ना हो. अच्छा, मोहम्मद जमान कहते हैं, मुंह चयो ना कोई भी टॉपिक के फॉलो न करे सकंदो. छो भला टॉपिक मुंह जो दुखियो पुछो छा भला. टॉपिक तो इजी हुयो. बस गाल याद तमा के समझ में जगह गाला ना थोड़ी देर ही दिया है. चलिए कोई बात नहीं. सना वाला बिरोही हमारे साथ मौजूद है. हेलो हिदायतुल्लाह, क्या कहते हैं वैसे आज. ये भी वैसे बात है, पता नहीं क्यों नहीं किया. इकबाल लाशारी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया. और उसके अलावा पोस्ट को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कीजिए. और साथ साथ जो है ना, यहाँ पर हम ये वाला प्रोग्राम का लास्ट ट्रैक लगाएंगे. अच्छा, मेरे प्रोग्राम में बहुत से लोग हैं, इतने सारे लोग हैं जो बोलते हैं जो है ना वो फौजिया सुमरो का गाना सुनाए हमें. तो फौजिया सुमरो का जो गाना है ना वो मैंने लिस्ट में लगा लिया है. ये गाना हम आप लोगों के साथ साथ सुनेंगे और उन तमाम तो लोगों को डेडिकेट करेंगे जो फौजिया सुमरो का गाना सुनना चाहते हैं.

अच्छा किशोर भाई, आप चाहते अलग हो लेकिन वो चाहते अलग ना हो, तो अब मैं तो बीच वाला इंसान हूँ ना, तो मैं क्या करूँ? तो फिर हमें बात माननी पड़ जाती है। बाकी आप जरूर ट्राई करके देखिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम, और साथ में आप फेस वॉश ट्राई जरूर कीजिएगा डी स्किन वालों का, ठीक है? डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, ये बड़ी कमाल की चीज है, तो इसको आप जरूर ट्राई करके देखिएगा, ये ऑल स्किन टाइप के लिए। और मजे की बात ये है कि इसके अंदर जो है ना वो विटामिन ई बीड्स शामिल है, जो कि पाकिस्तान में बहुत ही गिने चुने प्रोडक्ट आते हैं जिसके अंदर मौजूद होते हैं। और उन्हीं प्रोडक्ट में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हैं जिनके अंदर विटामिन ई बीड्स शामिल है, जो कि गहराई तक आपकी स्किन में अंदर जाते हैं, आपकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं, आपके चेहरे को निखारते हैं और आप लोगों को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ डी स्किन का फेस वॉश, ताकि आप लोगों को परफेक्ट वाला निखार मिले। और इसी के साथ साथ यहाँ पर प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है, तो हम आप लोगों से इजाजत लेंगे, और इसी के साथ साथ आप लोगों से और हमारी जो मुलाकात है वो कल वाली प्रोग्राम में होने वाली है, यानी कि 1 बजे से लेकर 3 बजे तक हम आप लोगों के साथ मौजूद रहते हैं, प्रोग्राम में फन करते हैं, बातें होती हैं, खूबसूरती की बातें करते हैं और आप लोगों को ब्यूटी टिप्स देते हैं, ठीक है ना? तो आप हमारा जो है ना ऐसे ही साथ दिया करें जैसे आप देते हैं हमेशा, और इसी के साथ साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें। सो मुकलानी नाहे बाबू सिंह सलामत, सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय, लव यू ऑल एंड

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़
3: और अली मुद्दती सियासी वाली मुकाबला हासिल करने की नाकाम कोशिश कर रहा है मौत का हक महज दो मालिक या फौज के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग न थी बल्कि दर हकीकत ये दोनों नज़रियात के दरमियान एक फैसला मुआवका था जिसमें अल्लाह के फजल से हक फतायाब और बातिल हज़ीमत से दोचार हुआ अफगानिस्तान से पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा है कि वो हिंदुस्तान की इमारत पर फितना अल-ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान की पुष्पनाही ही बंद करे और अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज और समाज गांवों का मुकम्मल खात्मा करे
4: अकबरी जंग रुगो बिन मुल्कन जी जंग न हुई पर बिन नजरियन में फैसलाती जंग हुई फील्ड मार्शल सिद आसम मुनीर जो ऑपरेशन बनियान मरसूस की कामयाबी की साल पूरो थियण जे थियो में कोठियल तकरीब के खिताब कयो फील्ड मार्शल सिद आसम मुनीर चयो त अकबरी जंग 7 मई जे विच में रात खां 10 मई ताईं दुश्मन असांजे क़ौमी वकार खे आज़माइण जी नाकाम कोशिश कई मई 2025 जी जंग खां ओचितो ईंदड़ जंग न हुई बासी में दुश्मन पाकिस्तान ते बेबुनियाद हथ ठोकिया इल्ज़ाम लॻाइण जी कोशिश कई पर हकड़ी जंग में भारतीय जहाज जो मुंह तोड़ जवाब दिनों पो पाकिस्तान दुश्मन के हर भेरे शिकस्त जो मुंह दिसो पो ऑपरेशन बनारन मरसूस के एक साल मुकम्मल थियण से जीएसपी में मुनद खास तकरीर के खिताब कदे फील्ड मार्शल आसम मुनीर चो दुश्मन जानी वी पाकिस्तान खिलाफ अगत अगराई जहा असर इंतहाई खतरनाक ए तकलीफ दींदड़ हूं भारत जो ख्वाब है तो पाकिस्तान की अस्करी जारियत ए सफारत की अकिलाई जो निशानो बनाए खिते में ताकत जो तवाजुन तब्दील करे यो ख्वाब उन जे कद ए सलाहियत का घणो वधीक है जो को पाकिस्तान कदें भी कामयाब थन न डींदो फिदा मज़ालन ए पाक फिजाए जे शाहिनन दुश्मन जे 26 खां वधीक फौजी हथन के कामयाबी सां निशानो बणायो अवाम ए क़ौमी क़यादत जो पैगाम आहे त मुल्की ख़ुदमुख्तियारी सरहदी सलामती ऐं क़ौमी वक़ार ते को बि था क़ाबिल क़बूल नाहे भारत जंग जे नतीजे में थियल जानी ऐं माली नुक़सान जी क़ीमत ईंदड़ वक़्तनि ताईं अदा कंदो रहंदो

पाक फ़ौज के जदीद घुर्जन से लैस करने डिफेंस फोर्सिस हेडक्वार्टर्स कायम कर छो पर दार इस्लामी मुल्क सऊदी अरब से स्ट्रेटजिक गडियल दिफाई वाहिदो असानी सफारती कामयाबियों में सब का वही कामयाबी है। अज पाकिस्तान पर असराती जिम्मेवारानी अणधुरी सफारतकारी जरिए तारीखी अमुन गाल मेजबानी कर रो है। फील्ड मार्शल सैद आसम मुनीर पंज खिताब में असं हर महाज से कश्मीरी अवाम की सियासी सफारती इखलाकी मदद जारी रखी असि मंजिल वो मकाम है जिनो ख्वाब असो बुजुर्गन दिखो हो। पाकिस्तानी कौम असि ताकत है असी कौम की कुवत आए। पाकिस्तान जो मुस्तबिल इनशाला तमाम घो रोशन है।

0: सुबह आता ही हर दिल दिल पर है बच्छाई है, गाले हैं खुदा का वार है, हम लड़ने के लिए तैयार है हम।
1: हक जी जंग में भारत जी प्रमनाक शिकस्त के एक साल मुकम्मल, आज समूरे मुल्क में फतेह जो जश्न मलाया पे बने। GHQ रावलपिंडी में शानदार तकरीब, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में मेहमान खास तौर शिरकत, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मेयर एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिंधु एंड नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ शहीदन की यादगार से हाजिरी, गुलदस्तो रखियो, फातह कहानी कई। ISPR पारा जारी कल बयान में कौम की हिमायत से हथियारबंद फौज सभी अंदरूनी ए बाहरी चैलेंजन के मूडण लाइ मुकम्मल तौर से तैयार है। जंग में फतह हथियारबंद फौज की तैयारी चाह ए पेशावराना सलाहत जो सबूत है। हक की जंग में कामयाबी आवाम जो हथियारबंद फौज के एतमाद के मजबूत किया है।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरा पर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरा पर। राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
5: न अदा।
7: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मिरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मिरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
6: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
5: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
7: ऑफिस जी मिरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मिरापुर।
6: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
8: 0301-399-2836
7: ऐं मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1565-724।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: यार, मैं कब से तैयार बैठी हुई हूँ, तुम हमेशा लेट कर देते हो यार।
1: मैं नहीं आ सकता जन्नत।
0: क्यों?
1: मैं भी शादी नहीं करना चाहता।
0: What? तुम्हीं ने तो कहा था।
1: झूठ कहा था।

0: It's 3:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे। जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-800।
1: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0385 5769 0300 3359।
2: अदा
3: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
2: न अदा
4: यार, अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलबु हर क़िस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर। राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347।
5: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GA FM 94।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: खुशखबरी खुशखबरी, हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खा इशा जे नमाज तई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खा रात 8 वगे तई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधिक राबते जे लाए 0385 569 0300 003 8559।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहराबपुर, राब्ते जे लाइ 0320 180 003।
5: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 0300002724। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर, 0301386545।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे.

0: It's 4:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hamay Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hamay Diamond Glow Bleach Cream.
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर ए सोम

0: वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592-120

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: सुनिए

0: इट्स 5 PM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: जडे मा पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़
3: साल की वारंटी के साथ।

0: 2008, 2016 और 2019 के नाम वाकयात यानी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस इस बात की दलील है कि हिंदुस्तान मजलूम भी इल्जाम तराशी मुबादला हराई जंगी जुनून और महदूद जाहिरियत के गुमराह उन सब को देंगे पाकिस्तान पर नाजायज जंग मुसलसल करने और ताकत के जोन में तंग नजर और कलील मुद्दती सियासी व अस्करी मकासिद हासिल करने की नाकाम कोशिश करता रहा है। मारवाए हक महज दो ममालिक या वाद के दरमियान लड़ी जाने वाली रवायती जंग न थी बल्कि दरहकीकत ये दोनों रियाद के दरमियान एक फैसला मुआका था जिसमें अल्लाह फजल से हक फतायाब और बातिल हजीमत से दोचार हुआ। अफगानिस्तान से पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा है कि वो हिंदुस्तान की इमा पर फितना अल-ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान की दुश्मनी ही बंद करे और अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज और समाज गांवों का मुकम्मल खात्मा करे।
1: हक वारी जंग रुगो बिन मुल्कन की जंग न हुई पर बिन नजरियन में फैसलाती जंग हुई। फील्ड मार्शल सैद आसम मुनीर जो ऑपरेशन बनारन मरसूस की कामयाबी के साल पूरे थे क्यू में कोठहल तकरीब के खिताब

0: कवायद अकबर जंग 7 मई जे विच वारी रात खां 10 मई ताईं दुश्मन असांजे क़ौमी वकार मथण ते GHQ में मुनक़द ख़ास तकरीब खे ख़िताब कंदे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो त दुश्मन ॼाणे वठे त पाकिस्तान ख़िलाफ़ अॻिते अग्राई छा असर इन ताईं ख़तरनाक ऐं तकलीफ़ ॾींदड़ हूंदा। भारत जो ख़्वाबु आहे त पाकिस्तान खे असले जारियत ऐं सफ़ारती अकेलाई जो निशानो बणाए खिते में ताक़त जो तवाज़ुन तब्दील करे। इहो ख़्वाबु हुन जे कद सलाहियत खां घणो वधीक आहे जेको पाकिस्तान कॾहिं बि कामयाब थियण न ॾींदो। फतेह मिज़ाइलनि ऐं पाकिस्तान फिज़ाया जे शाहिननि दुश्मन जे 26 खां वधीक फ़ौजी हथनि जी कामयाबीअ सां निशानो बणायो। अवाम ऐं क़ौमी क़यादत जो पैगाम आहे त मुल्की ख़ुदमुख़्तियारी सरहदी सलामती ऐं क़ौमी वक़ार ते को बि ठहर क़बूल नाहे। भारत जंग नतीजे में थियल जानी ऐं माली नुक़सान जी क़ीमत ईंदड़ वक़्त ताईं अदा कंदो रहंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
5: माशाल्लाह फौजी पाई फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर असां वटि जॻहि जूं ॾियारियूं जॻहि जा पावा ऐं पाइप 2, 4, 6, 9, 12 इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
6: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे। जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: It's 5:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: अवां जी स्किन डल एं बेरोनक लगे थी हाने पहिजी स्किन के दियो एक नओ ग्लो सॉफ्ट एं ग्लो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार खार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: अम्मा हेडो से मके छा मिलियो
4: छा मिलियो पुत्र

0: महसूस।
1: असाया पानी साफ ना है, तंजे करी तो सब बीमार था चाव। असा के पानी ए सफाई बिनन जो ख्याल रखन गुरजे।
2: केदो सयानो पुटरा मुंजो
1: बाबा, इयो ही जासूस तांगे बचाइंदो।
2: हां
3: साफ पानी महफूज जिंदगी, दस्तन खां बचा। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो।
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद, आर 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307-3592120।
5: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब।

0: डिपॉजिट से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: छा अवां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहिरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तवां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो जीए हुजे हीरो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे
1: लगाने के बाद किसी परफ्यूम की जरूरत नहीं। लाख ब्यूटी।

0: بلف بیوتی.
1: Thank you.

0: 2008, 2016 और 2019 के नाम में वाकयात यानी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस इस बात की दलील है कि हिंदुस्तान माज़ी भी इल्जाम तराशी मुबालगा आराई जंगी जुनून और महदूद जहीरियत के गुमराह तसव्वुर के जरिए पाकिस्तान पर नाजायज जंग मुसल्लत करने और ताकत के ज़ोन में तंग नजर और कलील मुद्दती सियासी वास्तविक मकासद हासिल करने की नाकाम कोशिश करता रहा है। मार्का हक महज दो ममालिक या वाद के दरमियान लड़ी जाने वाली रवायती जंग न थी बल्कि दर हकीकत ये दोनों नज़रियात के दरमियान एक फैसलन मार्का था जिसमें अल्लाह की फजल से हक फतायाब और बातिल हज़ीमत से दोचार हुआ। अफगानिस्तान से पाकिस्तान सिर्फ एक मुतालबा है कि वह हिंदुस्तान की ईमा पर फितना अल-ख़वारिज और फितना अल-हिंदुस्तान की पुष्पनाही ही बंद करे और अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज और समाजगाहों का मुकम्मल खात्मा करे।
1: हक वारी जंग रुगो बिन मुल्कन न पर बिन नजरियन में फैसलाइती जंग हुई। फील्ड मॉडल जो ऑपरेशन बुनान मरसूसी कामयाबी के साल पूरो थियण ते जीएचक्यू में कोठायल तकरीब के खिताब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो आहे त 7-10 मई ताईं दुश्मन असांजी कौमी वकार के आज़माइण जी नाकाम कोशिश कई। दुश्मन ॼाणे वठे त पाकिस्तान खिलाफ़ अगराई जा असर इंतिहाई ख़तरनाक ऐं तकलीफ़ ॾींदड़ हूंदा। भारत जो पाकिस्तान के सफारती अकेलाई जो निशानो बणाए खिते में ताकत जो तवाज़ुन तब्दील करण वारो ख्वाब संदसि कद ऐं सलाहियत खां घणो वधीक आहे। पाक फिज़ाइया जे शाहीननि दुश्मन जी 26 खां वधीक फ़ौजी हदफनि खे कामयाबी सां निशानो बणायो। अवाम ऐं क़ौमी क़यादत जो पैगाम आहे त मुल्की ख़ुदमुख़्तियारी सरहदी सलामती ऐं क़ौमी वकालत ते को बि ठाह क़बूलण जोॻो नाहे। पाक फ़ौज खे जदीद घुर्जनि सां लेस करण लाइ डिफेंस फोर्सिस हेडक्वार्टर्स क़ाइमु करे छॾियो। जेको ख़्वाब असांजे बुज़ुर्गनि ॾिठो उहो ई असांजी मंज़िल आहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो आहे त बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब सां स्ट्रेटजिक गॾियल दिफ़ाई मुआदो असांजी सफ़ारती कामयाबियुनि मां सभ खां वॾी कामयाबी आहे। अॼु पाकिस्तान पंहिंजी असराइती ज़िमेवाराणी ऐं अण धुरी सफ़ारतकारी ज़रिए तारीख़ी अमुन ॻाल्हियुनि जी मेज़बानी करे रहियो आहे। हर महाज़ ते कश्मीरी अवाम जी सियासी सफ़ारती ऐं इख़लाक़ी मदद जारी रखंदासीं। पाकिस्तानी क़ौम असांजी ताक़त आहे ऐं असीं उन जी क़ुवत आहियूं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ऐं नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ शहीदनि जी यादगार ते हाज़िरी भरी गुलदस्तो रखियो ऐं फातिह फ़ानी बि कई।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खोना तो खे मुझे रो पाए तैयार थियण जो
2: तू आज भी हसी
1: थोरो पाए तो देखार
3: ना मां मां थकी पई आहां।
1: न पुट ही थक ना है रत जी कमी आ है। दिसता केडो न फिको थी हुआ है तुंजो चेहरो।
3: छा कया मां
1: 6 महीना थी वे इन पुट तू उम्मीद सा आई ऐ हाने वनी तो शुरू कई है फौलाद जी गोरी कच्चू भाजू खाईंदी कर पुट तोखे खबर है असा त मेवन जो खलू खाई विंदा हुआ से उनन साई त खून ठांदो है इनसा न तोखे कुछ थिंदो अ नई बा रखे पुट हाने तू मां थण वाली आही पहंजो ख्याल रखन बेन खांप वधिक जरूरी है।
2: मेरी बातें तेरे जिम्मे अब ये तुझको निभानी है।
4: जदे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नस्लन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
5: छा अहां जो चेहरो बेजान ए डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम ए रोशन चेहरो पहिरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो जीए हुजे हीरो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज।
6: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
7: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
6: हाने यचो मेरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
7: राप्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000
2: उम्मीद के दिए जलते हैं।
8: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जै में मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800003

ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।

0: 6:30 PM. This time check is brought to you by
1: हमें डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी। हमें डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
2: हेलो वरना, खबर ना है, मैं हर वक्त तेरी थकेला थकेला शो दिया आया।
3: तू खाइंदी चाहे स्कूल में बाकी बारन जी मंझन जी मानी डिठिया है।

0: केन है त तव्हां हुन खे रोज अंडा खाराइजो, मंझंदि जी मानी में सूफ़ ॾिजो, त जीअं स्कूल में मुंहं घुर थकियल थकियल न हुजे।
1: ॿारनि में कमज़ोरी अक्सर ज़रूरी ग़िज़ाई जुज़नि जी घटिताई हूंदी आहे, जेका उन्हनि जे सिखण जी सलाहियत में रंडक बणिजे थी। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ ॿिनि ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: सॼो ॾींहुं ॾिसां थी तोखे परेशान घुमंदी रही आहीं। पहिरियों भेरो मां थी रही आहीं न, मुझो भी इहो ई हाल हो।
4: ख़बर नाहे तव्हां ही सभु कुझु कीअं कयो नानी, मां त एतिरो थकी थी पवां, छा कयो।

0: जॾहिं ॿिए ॿार जे सोचण जो वक़्तु अचे त ॿ साल तूं सोचजांइ, बसि इहा ॻाल्हि कमु ईंदी।
1: जॾहिं नई माउ बणजण जो डपु हुजे त कंहिं पुराणीअ जी ॻाल्हि ॿुधो। हमल जे दौरान रत जी घटिताई खे बि नज़रअंदाज़ न करियो। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359210।

0: जी गल है शिफा अल्लाह ताला जे हथ में है, लेकिन गाल है होम्योपैथिक दवा जे हवाले सा त ओ वहां के तई पहुंचाई सी, या नक जी हड्डी जो गोश्त वधी विंदो है उन जो भी जे साजर किसो भी असा खोलियो सी ऐ गाल अध में रही वही त चाहे टॉन्सिलाइट्स होजन या गले जा गदूद होजन त उनन जो भी जडे असा बेसिकली एकड़ा नेजल पोलिप्स थिना है जेके एलर्जी जे करे जेको रेशो नक में अची वेंदो आहे ऐं पोइ उहे गदूदनि जी सूरत अख़्तियार करे वेंदा आहिनि, उन्हनि जी जॾहिं असां मेडिसिन्स ॾींदा आहियूं त अलहमदिल्ला उहे बि जेको आहे सो बिल्कुलु उन्हनि जी एलर्जी बि ख़तमु थी वेंदी आहे ऐं उहे गदूद बि ख़तमु थी वेंदा आहिनि। छो जो उन्हनि जे ॾिसो हिकिड़ो नाज़ुक मसइलो हूंदो आहे, जॾहिं उहो जा गदूद निकिरी ईंदा आहिनि त न हू साह सही खणी सघंदा आहिनि न वरी जेको आहे सो सही ॻाल्हाए सघंदा आहिनि, उन्हनि खे न बिल्कुलु नास बंदि हूंदी आहे, राति जो सुम्ही न सघंदा आहिनि। अहिड़े क़िस्म जे मरीज़नि खे जेके अहम निशानियूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे एलर्जी न छॾींदी आहे, खूंगरा उन्हनि जा आम हूंदा आहिनि, ऐं जॾहिं अव्हांखे ख़बर आहे त जॾहिं उन्हनि जो नक जी जेके गदूद वधी वेंदा आहिनि उनजे करे, छो जो ईयर नोज़ थ्रोट हिकिड़ो ई रस्तो हूंदो आहे कनु नक ऐं गले जो, पोइ जॾहिं उहो रेशो ॻणंदो आहे या गदूद ठही वेंदा आहिनि त पोइ उन्हनि खे कननि ते बि ताड़ी चढ़ी वेंदी आहे, यानी उहे कननि खां न ॿुधी सघंदा आहिनि ऐं कननि खां बि रेशो वरी ॻणणु शुरू थी वेंदो आहे, ऐं उहो ई रेशो वरी जेको आहे सो जॾहिं कन ब्लॉक थी वेंदा आहिनि त वरी गले जे तरफ़ जेको आहे सो कंदा आहिनि, पोइ यानी वरी गले में उन्हनि खे जेको आहे सो इहो जेको आहे सो जंहिंखे निडियलेस बि चऊं ज़ुकाम थी वेंदो आहे या चेस्ट कंजेक्शन थी वेंदी आहे, बलगम पोइ उन्हनि जो न निकिरंदो म्यूकस ठही वेंदो आहे, उनजो बि असां वटि होम्योपैथी उन अहिड़े क़िस्म जे पेशंट्स जे लाइ फ़िलहालु फर्स्ट एड तौर ते मां ॿुधाईंदो आहियां त उन्हनि खे गरम पाणी जी भाप जेको आहे सो वठणु घुरिजे या गरम पाणी सां जेको आहे सो उन्हनि खे गराड़ा करणु घुरिजनि ऐं गरम पाणीअ सां जेको आहे सो नमक विझी उनजो नक साफ़ु करणु घुरिजे, त इहा हिकिड़ी फर्स्ट एड आहे, लेकिन उन्हनि जो मुकमल ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में, छो जो ऑपरेट माण्हू केतिरो कराईंदो, ऑपरेट कराइण खां पोइ बि इहे केसिस ॾिसण में आहिनि, चाहे साइनोसाइटिस जा हुजनि चाहे टॉन्सिलाइटिस जा हुजनि, ऑपरेशन कराइण खां पोइ बि जेको आहे सो वरी उहे साॻई जेको आहे सो उन्हनि जा गदूद वधी वेंदा आहिनि, ऐं इहो ई हाल साॻोई स्टोन्स जो बि हूंदो आहे, तव्हां चाहे स्टोन कढायो बि ऑपरेट करायो लेकिन ऑपरेशन खां बाद में बि जेको आहे सो वरी स्टोन्स ठही वेंदा आहिनि। असांजो होम्योपैथिक दवाउनि में इहो ई जेको आहे सो हिकिड़ी मौजज़ाना करामतूं रखियल हूंदियूं आहिनि, त जॾहिं हिकिड़ी त ऑपरेशन खां बग़ैर पथरी निकिरींदी आहे लेकिन दवा अहिड़ो कमु करे वेंदी आहे त वरी उहा पथरी न ठहंदी आहे, यानी एतिरा पंहिंजा असरात छॾे वेंदी आहे। सो इन हवाले सां होम्योपैथिक दवा तमामु जेको आहे सो आई त होम्योपैथिक दवा जो को बि साइड इफ़ेक्ट कोन्हे को, हिकु त अव्हांखे फ़ाइदो जेको आहे सो यानी जड़ खां वठी मर्ज़ खे ख़ात्मो कराईंदी आहे ऐं हिन जो को बि साइड इफ़ेक्ट कोन्हे को, त पोइ असां छो न जेको आहे सो उन रस्ते ते अचूं जेकी असांखे को फ़ाइदो ॾिए ऐं को नुक़सान खां अलावा जेको आहे सो फ़ाइदो ॾिए, सो उहो आहे होम्योपैथिक दवा। होम्योपैथिक दवा हींअर त जग जहान में मशहूरु आहे ऐं जेके बि असांजा जेको से मशाला चाहे हिते चाहे जेको आहे हींअर ॿाहिरि काफ़ी सारा पेशेंट आहिनि जेके असां वटि होम्योपैथिक मेडिसिन्स ताईं जेको आहे हूंदा आहिनि।
1: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि शी मेहराब एफ एम 94 जो ई आवाज़ तव्हांजे समातुनि ते पहुचे पियो। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऐं इस्पताल नवाबशाह असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जेकी मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति तव्हांखे ॼाण ॾेई रहिया आहिनि। डॉक्टर साहिब जो ख़ासि महिरबानियूं मोहबतूं आहिनि जो पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी करे डॉक्टर साहिबु असांजे स्टूडियो में ईंदा आहिनि। अव्हांखे हाणे कराची नवाबशाह हैदराबाद या इस्लामाबाद वञण जी ज़रूरत नाहे, उहो ई सिंध जो मशहूरु ऐं मारूफ़ डॉक्टर असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहे। 03-101-96-851 असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे। होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऐं इस्पताल नवाबशाह डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु। गुर्दे जी पथरी आहे, मसाने जी पथरी आहे, इन खां अलावा गले जा गदूद वधियल आहिनि या नक जी हॾी वधियल आहे, उनजो बग़ैर ऑपरेशन जे इलाज कयो वञे थो। अव्हांखे ऑपरेशन कराइण जी का बि ज़रूरत नाहे, कॾहिं बि अव्हांखे मायूस नाहे थियणो। गोॾनि में सूरु आहे, संदनि में सूरु आहे, जोड़नि जो सूरु आहे, नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूरु अधु मथे जो सूरु नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहणु कन जो सूरु घटि ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिलि जा मर्ज़ फालज खंघ टीबी मादे जो सूर मादे जी अल्सर त्री जो वधण जिगर हेपाटाइटिस बी सी गुर्दन जो इन्फेक्शन मर्दनि ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। डॉक्टर साहिबु हर अरबा ख़मीस जुमो छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं

0: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।
1: खुशखबरी खुशखबरी, हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़र रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300 583 569 0300 3855 69।

जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।

0: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94
1: इस्तेमाल करियो हेमे नेचर्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम आई हासिल करियो नो ग्लो नो एतमाद हर डी हुजे एक नो ग्लो एक नो कॉन्फिडेंस हेमे नेचर्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
2: वतन की तरक्की के लिए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जज्बाए हुब्बुल वतनी का शुक्रिया कि जिन्होंने इंतहाई कम मुद्दत में स्टेट बैंक की खुसूसी पेशकश रोशन डिजिटल अकाउंट को शानदार कामयाबी से हमकिनार कर पाया वतन से दूर रोशन इक्विटी इन्वेस्टमेंट में सरमायाकारी से बेहतरीन मुनाफा हासिल किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट विजिट करें रोशन डिजिटल अकाउंट खोलकर कामयाबी के सफर में शामिल हो जाएं

0: पहुतो आहे। जरासीम खां पाक ओज़ार, वक़्तु सुबुह 8 वॻे खां मंझंदि 1 वॻे ताईं। पतो नज़्द गुल होटल हालाणी। राब्ते जे लाइ 0351-63-088।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड मेरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा, खमीस जुमे, छंछर आचर ऐं

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-96-8051
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003

सिंध राउंड अप में अॼु अव्हां ॿुधी सघंदा। सिंध सरकार पारां कोटड़ीअ खे हैदराबाद सां मिलाइण जे लाइ नई पुल अॾण, हारिन ऐं ट्रांसपोर्टरनि जीअं मुहाणनि खे तेल सब्सिडी ॾियण, बाइका मोटरसाइकिलूं हलाईंदड़नि जे लाइ सिंध सेल्स टैक्स में छूट जो ऐलान करे छॾियो। वर्क्स एंड सर्विस खाते में नवाज़िशूं, एक्सीएन जा टे अहम उहिदा असिस्टेंट इंजीनियरनि हवाले, कार वहिंवार मुतासिर। सिंध में 65 सालनि जा बुज़ुर्ग बि वीसी शिप लाइ अहल करार, बोर्ड जूं भर्तियूं सर्च कमेटीअ हवाले। वॾे वज़ीर पारां कराची जे शहर

ट्रांसपोर्टरनि जी आहे। वाहणनि खे तेल सब्सिडी ॾियण, बाइक मोटरसाइकिलूं हलाईंदड़नि जे लाइ सिंसेल टैक्स में छूट जो ऐलान करे छॾियो। काल्ह वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जे सदारत हेठि थियल काबीना जे इजलास में 30 अरब रूपियनि जी तरक़ियाती, फलाही ऐं इस्लाही एजेंडा जी मंज़ूरी ॾिनी वई। इजलास में कराची, ठटो, सुजावल ऐं बदीन जे वाहणनि खे फौरी माली रिलीफ फराहम करण जे लाइ 515 मिलियन रूपियनि जो फ्यूल सब्सिडी पैकेज जी मंज़ूरी ॾिनी वई। वॾे वज़ीर चयो त डीज़ल जे वधंदड़ क़ीमतुनि सबबि मच्छी जे शिकार में 20% घटताई आई आहे। उन ई करे हज़ारे मुहाणनि जी रोज़गार खे ख़तरो पैदा थी वियो आहे। हिन स्कीम तहत 9,634 रजिस्टर्ड ॿेड़ियुनि होड़नि खे 1 खां 2 लखनि ताईं टारगेटेड मदद फराहम कई वेंदी। इजलास में मोटरसाइकिल मालिकनि खे मई में बि 2,000 रूपिया तेल सब्सिडी ॾियण जो फ़ैसिलो कंदे 2 अरब रूपिया जारी कया विया। इजलास में परगणे में बाइक हलाईंदड़नि ते लागू सिंध सेल्स टैक्स 5% खां घटाए 2% करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई। उन सां गॾु 120 मिलियन जो फ़ाइदो थींदो। इजलास में वॾे वज़ीर माली कमेटीअ जी सिफ़ारिश ते हैदराबाद कोटड़ी विच में सिंधू दरिया ते 1.12 किलोमीटर डिघी हाईवे पुल जी इंजीनियरिंग डिज़ाइन जे लाइ 147.2 मिलियन रूपियनि जो कंसल्टेंट सर्विस लाइ ग्रांट जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। वॾे वज़ीर चयो त उहा पुल मुल्क जे ॿिनि इलाइक़नि ॾांहुं अच वञ जी हल्की ऐं गरीब ट्रैफ़िक जे लाइ वॾी सहूलियत साबित। सिंध काबीना वाइस चांसलरनि जी मुक़ररी जे लाइ उमिरि जी हद 62 खां वधाए 65 साल करे छॾी, जॾहिं त ज़रूरी तजुर्बे खे 15 खां वधाए 20 साल कयो वियो आहे, जंहिं में घटि 10 HEC जूं तसदीक थियल अशातूं लाज़मी करार ॾिनियूं वियूं आहिनि। काबीना सिंध जे 7 तालीमी बोर्डनि जे लाइ ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स एडिशन 2026 जी मंज़ूरी ॾिनी, जंहिं हेठि चेयरमैन, सेक्रेटरी, कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन ऐं ऑडिट ऑफिसर जहिड़ियूं पोज़ीशनूं हाणे मयारी सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी ज़रिए भरियूं वेंदियूं। नए ज़ाब्तनि तहत चेयरमैन BPS 19 ऐं 20 जे लाइ उमिरि जी हद 40 खां 55 साल मुक़ररु कई वई आहे, जंहिं लाइ मास्टर डिग्री, फर्स्ट डिवीज़न ऐं 15 सालनि जो सीनियर मैनेजमेंट तजुर्बो घुर्बल हूंदो। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह कराची जे अहम तरक़ियाती रिथाउनि जो तफ़सीली दौरो कयो ऐं लाॻापियल अमलदारनि खे हिदायत कई त कराची बस रिपिड ट्रांज़िट रेड लाइन कॉरिडोर शाराए भुटो ऐं पहलवान गोट रोड ते कम जी रफ़्तार तेज़ कई वञे, जॾहिं त सभिनी रिथाउनि में मयार ऐं शफ़ाफ़ियत खे यकीनी बणायो वञे। वॾे वज़ीर ऐलान कयो त शाराए भुटो खे ईद खां अॻु ट्रैफ़िक लाइ खोजियो वेंदो, जंहिंखे हुन कराची जे आवाम जे लाइ ईद जो तोहफ़ो करार ॾिनो। वॾे वज़ीर चयो त वसीला मौजूदु आहिनि, हाणे मूंखे ज़मीन ते नतीजा नज़र अचणु घुर्जनि। कमु केतिरनि ई शिफ्टुनि में जारी रखियो वञे त जीअं मुक़ररु वक़्त अंदरि मुकमल थिए ऐं शहरनि खे जल्द रिलीफ़ मिले। वॾे वज़ीर मौसमियात ते फ्लाई ओवर जो कमु नामुकमल ॾिसी फौरी तौर ते ॿीहर शुरू करण जी हिदायत कई ऐं यकीन ॾियारियो त फंड्स ऐं वसीला फराहम कया वेंदा। हुन चयो त शाराए भुटो शहरांदर ट्रैफ़िक जे दॿाउ खे घटाईंदी ऐं M9 ऐं N5 शाराहुनि जे विच में राब्ते खे बहितर बणाईंदी। ॻरी ट्रैफ़िक शहर खां ॿाहिरि मुंतक़िल थी वेंदी, जंहिं सां कराची जे रहवासियुनि खे वॾो रिलीफ़ मिलंदो। वर्क्स एंड सर्विस खाते में अंधेर नगरी, सूबाई बिल्डिंग डिवीज़न कराची में असिस्टेंट इंजीनियर ते नवाज़िश। सूबाई बिल्डिंग्स डिवीज़न जे एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर वारनि 3 पोस्टुनि ते मनपसंद असिस्टेंट इंजीनियरनि खे इज़ाफ़ी चार्जूं हवाले थियल। एक्सटेन एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर वारे उहिदे ते हेठनि ग्रेड जा असिस्टेंट इंजीनियर मुक़ररु हुजण सबबि वहिंवार रोलड़ जो शिकार बणियल आहे। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि वर्क्स खाते जे इख़्तियारनि पारां असिस्टेंट इंजीनियरनि ते ख़ासि नवाज़िश कंदे खेनि एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर वारा उहिदा इज़ाफ़ी चार्ज तौर खेनि हवाले कया विया आहिनि। केतिरनि ई महीननि खां वर्क्स खाते पारां XN1, XN2 ऐं XN3 वारे उहिदे ते एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियरनि खे मुक़ररु करणु बजाए पंहिंजे मनपसंद असिस्टेंट इंजीनियरनि खे मथियनि उहिदनि ते मुक़ररु कयो वियो आहे। उन हवाले सां मिलियल मालूमात मूजिबि XN1 वारे उहिदे ते असिस्टेंट इंजीनियर वजाहत पाटोली खे इज़ाफ़ी चार्ज मिलियल आहे, जॾहिं त XN2 वारे उहिदे ते वरी असिस्टेंट इंजीनियर अब्दुल्ला मस्तोई ऐं XN3 जे उहिदे जे असिस्टेंट इंजीनियर ताहिर ख़ान खे इज़ाफ़ी चार्ज मिलियल आहे।
सिंध सेक्रेटरियट जे मुख़्तलिफ़ ब्रेकनि समेत सरकारी आफ़ीसुनि अस्पतालुनि ऐं ॿियनि सरकारी इमारतुनि में मरमती ऐं तामीराती कमनि वारा हलंदड़ मनसूबा असिस्टेंट इंजीनियरनि वक़्त हवाले करण सबबि समूरो वहिंवार सख़्त मुतासिर थी रहियो आहे। ज़रियनि वटां मिलियल ॼाण मूजिब त वक़्त खाते में 14 खां 19 ताईं असिस्टेंट इंजीनियर मथे ग्रेड वारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जे उहिदे ते तरक़ियूं माण जे इंतज़ार में वेठल आहिनि, पर वक़्त खाते जे अख़्तियारनि पारां ॼाणायल असिस्टेंट इंजीनियरनि

लाइ चइन महीननि खां डीपीसी रोकी वई आहे, जंहिं करे असिस्टेंट इंजीनियर केतिरनि ई महीननि खां तरक़ियूं माणण खां महरूम बणियल आहिनि। सिंध काबीना पारां मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम में वाद कैब सर्विस लाइ सेल्स टैक्स में वॾी घटाई जी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जे सदारत हेठि थियल सूबाई काबीना जे इजलास में अवामी सहूलियत लाइ अहम फ़ैसिला कया विया, जंहिं में पीपल्स मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम जे मद में 31 मई 2024 ताईं वाद कई वई। वॾे वज़ीर हिदायत कई त फ्यूल सब्सिडी जे मद में मई महीने जे लाइ 2 अरब रुपया फौरी तौर जारी कया वञनि। इजलास दौरान वॾे वज़ीर खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो वियो त हिन वक़्त ताईं 5,48,000 खां वधीक माण्हुनि खे फ्यूल सब्सिडी जी अदायगियूं जारी आहिनि, जॾहिं त हींअर ताईं 1.96 अरब रुपया विरिहाया विया आहिनि। काबीना पारां मोटरसाइकिल कैब सर्विस ऑनलाइन राइडिंग एप्स जे लाइ सेल्स टैक्स में बि वॾी घटाई कई वई आहे। ब्रीफिंग मूजिबि काबीना सेल्स टैक्स खे 5% मां घटाए 2% करे छॾियो आहे, जंहिं सां सालियानो 120 मिलियन रुपियनि जो माली असर पवंदो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जो चवण हो त हिन क़दम सां ऑनलाइन सर्विस फराहम कंदड़ सभई ड्राइवरनि खे सिधो सओं फ़ाइदो पहुचंदो। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन गॾियल चटाभेटीअ वारे इम्तिहान 2024 जे लिखत वारे इम्तिहान जा नतीजा जारी करे छॾिया आहिनि, जंहिं में 70 उमेदवार कामयाब करार ॾिना विया आहिनि। कामयाब उमेदवारनि खे हिदायत कई वई आहे त 7 ॾींहनि जे अंदरि तालीमी सर्टिफिकेट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे आफ़िस में जमा कराइनि। ॿिए मरहले में कामयाब उमेदवारनि खां इंटरव्यू वरितो वेंदो। नतीजनि वारे नोटिफिकेशन में ॼाणायो वियो आहे त कामयाब ऐं नाकाम थींदड़ उमेदवारनि जूं मार्कूं वेबसाइट ते रखियूं वयूं आहिनि। चटाभेटीअ जे इम्तिहान में 70 उमेदवारनि मां सभ खां वधीक कराची जा 15 उमेदवार कामयाब थिया आहिनि, जॾहिं त खैरपुर ज़िले जा 6, सखर जा 4, लाड़काणू 4, होटकी 4, मटियारी 3, उमरकोट 2, थरपारकर 2, ठट्टो 2, जामशोरो 2, दादू 2, बदीन 2, टंडो मामन खान 1, सांगड़ 2, नौशर फिरोज 1, उमरकोट 1, कंबर 1, जिकमाबाद ज़िले जा 2 ऐं कश्मोर ज़िले जा बि 1 उमेदवार कामयाब थिया आहिनि। पहिरें नंबर ते थरपारकर जो बशीर अहमद सूमरो आहे, जंहिं 610 मार्कूं हासिल कयूं आहिनि। सिंध जा 3 तारीख़ी क़िला आलमी सकाफ़ती विरसे जी फ़हिरिस्त में शामिल। यूनेस्को मीरपुर ख़ास जे नओं कोट क़िलो, खैरपुर जो कोट डिज क़िले ऐं उमरकोट क़िले खे पंहिंजे लिस्ट में शामिल करे छॾियो आहे। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि त अक़वामे मुतहिदा जे तालीमी, साइंसी ऐं सकाफ़ती इदारे यूनेस्को सिंध जे 3 तारीख़ी क़िलनि खे आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल करण जे लाइ इब्तिदाई लिस्ट में बाज़ाबता तौर शामिल करे छॾियो आहे। उन ॾस में यूनेस्को जे पाकिस्तानी नुमाइंदे नोटिफिकेशन पिण जारी कयो आहे, जंहिं में लाॻापियल इख़्तियारनि खे 3 क़िलनि बाबति आगाही ॾिनी वई आहे। ॿिए तरफ़ सिंध जे क़दीमी असारनि वारे खाते जे डायरेक्टर जनरल अब्दुल फताह शेख जो चवणु आहे त नओं कोट क़िलो, उमरकोट क़िलो ऐं कोट डिजी क़िलो यूनेस्को जे इब्तिदाई लिस्ट में शामिल थियण बाद 3 आलमी सतह ते पज़ीराई मिलंदी। हुन चयो त तारीख़ी हंधनि खे हतमी तौर लिस्ट में शामिल करण खां अॻु खेनि इब्तिदाई फ़हिरिस्त में शामिल कयो वेंदो आहे, जंहिं दौरान उन्हनि जी तारीख़ी, सकाफ़ती ऐं साइंसी इतबार खां जाइज़ो वरितो वेंदो आहे।

0: पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। मुल्क में वधंदड़ दवाओं की कीमत ऐं जाली दवाओं के कारोबार अवाम की जिंदगी के सख्त खतरे में विझी छोड़ो है। बीमारियों से विरड़ंदड़ गरीब मानू अज दवा खरीद करने की सख विझाए वेठो है। माहिरन मूजिब दवाओं के अघ में बार बार वाध जो वो सबब हुकूमत पारा कीमतों ते कंट्रोल खत्म करण है। अग हुकूमत दवाओं की कीमतों के जब्ते हेठ रखंदी हुई पर आहिस्ते आहिस्ते दवा साज कंपनियों के मुकम्मल आजादी मिली वही जिखा पोए दवाओं जो कीमतों केतरा ही भेरा वधियों नतीजे तौर मरीजन लाए इलाज कराने दुख्यो बनजी वयो। गरीब लाए इलाज ख्वाब बनजी वयो। अज केतरा ही मरीज पांजे इलाज अध में छड़े रहा हैं छाकाण त सदन आमदनी दवाओं के खर्च अगया बेवस बनजी वने थी। केतरा ही वालदेन पांजे बारन जी तालीम या घर जी जरूरतों ते खर्च घटाए दवाओं खरीद करने ते मजबूर आहिन। खास तौर ते दिल शुगर कैंसर ऐं गुर्दन जी बीमारियों में इस्तेमाल थींदड़ दवाओं जी कीमतों आम मानू जी बर्दाश्त का बाहर थी वयूं आहिन। ड्रिप ते सवालिया निशान सेहत के शोबे से लागापल माहिर समाजी हल्कन जो चवण है त दवा साज इदारन की निगरानी कंदड़ इदारे ड्रिप की कारकर्दगी ते सुठन था। इल्ज़ाम आहिन त कुछ अमलदारन दवा साज कंपनियों से गठजोड़ करे अवामी मुफादन के बदरा कारपोरेट मुफादन के तहफुज दई रहा आहिन। जाली दवाओं के कारखानों खिलाफ कार्रवाई महदूद गैर असरायतू नजर अचन थ। हुकूमत लाए अहम सवाल जैसे रियासत पांजे शहरों के सस्तो इलाज मयारी दवाओं भी फराहम नथी कर सके तो बुनियादी जिम्मेवारी निभाण में नाकाम समझी वेती। सेहत कें भी रियासत की बुनियादी जिम्मेवार मां एक है पर मौजूदा हालतों में लगे तो हुकुमरान लाए अवामी मसलन का अहमियत कारोबारी मफादन के हासिल है। माहिरन जो तजवीजू माहिरन समाजी तंजीम ने हुकूमत का मुतालबो किया है त दवाओं की कीमतों के बीहर रेगुलेट किया वे ड्रिप की आजाद जांच कराई वे करप्ट अमलदार खिलाफ कार्रवाई कई वे जाली दवाओं ठाईदड़ लाए खास अदालतों कायम कई वन सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मयारी दवाओं फराहम कई वन दवा साज कंपनियों डॉक्टर की गठजोड़ रोकण के लिए शफाफ कानून ठाया वन। गडियल आवाज की जरूरत ही मसलो रुगो दवाओं की महंगाई तई महदूद न है बल्कि लखे मानून की जिंदगी मौत से जुड़ियल है। उन लाए पार्लियामेंट अदलिया मीडिया सिविल सोसाइटी के गजी आवाज उथारण पवंदो जी अवाम के सेहत जड़ो बुनियादी हक फराहम थी सके। जैकडे वक्त सर कदम न खया व्या गरीब मानू इलाज के खोट सबब तकलीफुन मौत के मुंह में वनण से मजबूर थी वा। यो हिन वक्त जो सिंध राउंडअप बे आचर जे सिंध राउंडअप तई गुलाब खान भेण के दिंदा इजाजत अल्लाह निगहबान। सिंध डेंटल क्लिनिक डॉक्टर रफीक अहमद कंसल्टेंट डेंटल सर्जन बीडीएस आरडीएस सी एंडो सी आर्थो एचएसए इस्लामाबाद असावट बगैर तकलीफ जे दंद कढ़िया नवा दंद लगाया वेंदा हर कम जदीद टेक्नोलॉजी से कयो वेंदो आहे। जरासीम खां पाक ओजार वक्त सुबह 8 वगे खां मंझंद 1 वगे ताई पतो नज़्द गुल होटल हालाणी राबते जे लाए 0351 63 088।
1: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाने वक्त आहे चमकण जो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए होजे हीरो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज़।

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी भैरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 हैं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0308-5769।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: फ्री रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी

स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।

0: सिंध के वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह कराची जे अहम तरक़ियाती रिथाउनि जो तफ़सीली दौरो कयो ऐं लाॻापियल अमलदारनि खे हिदायत कई त कराची बस रिपिड ट्रांज़िट रेड लाइन कॉरिडोर शाराए भुटो ऐं पहलवान गोट रोड ते कम जी रफ़्तार तेज़ कई वञे, जॾहिं त सभिनी रिथाउनि में मयार ऐं शफ़ाफ़ियत खे यकीनी बणायो वञे। वॾे वज़ीर ऐलान कयो त शाराए भुटो खे ईद खां अॻु ट्रेफिक लाइ खोलियो वेंदो, जंहिंखे हुन कराची जे आवाम जे लाइ ईद जो तोहफ़ो करार ॾिनो। वॾे वज़ीर चयो त वसीला मौजूद आहिनि, हाणे मूंखे ज़मीन ते नतीजा नज़र अचणु घुर्जनि। कमु केतिरनि ई शिफ्टुनि में जारी रखियो वञे त जीअं मुक़ररु वक़्त अंदरि मुकमल थिए ऐं शहरनि खे जल्द रिलीफ़ मिले। वॾे वज़ीर मौसमियात ते फ्लाई ओवर जो कमु नामुकमल ॾिसी फौरी तौर ते ॿीहर शुरू करण जी हिदायत कई ऐं यकीन ॾियारियो त फंड्स ऐं वसीला फराहम कया वेंदा। हुन चयो त शाराए भुटो शहरांदर ट्रैफिक जे दबाउ खे घटाईंदी ऐं एम नाइन ऐं एन फाइव शाराहुनि जे विच में राब्ते खे बहितर बणाईंदी। गरी ट्रैफिक शहर खां ॿाहिरि मुंतकिल थी वेंदी, जंहिं सां कराची जे रहवासियुनि खे वॾो रिलीफ मिलंदो। वर्क्स एंड सर्विस खाते में अंधेर नगरी, सूबाई बिल्डिंग डिवीज़न कराची में असिस्टेंट इंजीनियर ते नवाज़िश। सूबाई बिल्डिंग्स डिवीज़न जे एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर वारनि टिनि पोस्टुनि ते मनपसंद असिस्टेंट इंजीनियरनि खे इज़ाफ़ी चार्जूं हवाले थियल। एक्सटेन एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर वारे उहिदे ते हेठनि ग्रेड जा असिस्टेंट इंजीनियर मुक़ररु हुजण सबबि वहिंवार रोलड़ जो शिकार बणियल आहे। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिब वर्क्स खाते जे इख़्तियारनि पारां असिस्टेंट इंजीनियरनि ते ख़ासि नवाज़िश कंदे खेनि एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर वारा उहिदा इज़ाफ़ी चार्ज तौर खेन हवाले कया विया आहिनि। केतिरनि ई महीननि खां वक्स खाते पारां एक्सन वन, एक्सन टू ऐं एक्सन थ्री वारे उहिदे ते एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियरनि खे मुक़ररु करण बजाए पंहिंजे मनपसंद असिस्टेंट इंजीनियरनि खे मथियनि उहिदनि ते मुक़ररु कयो वियो आहे। उन हवाले सां मिलियल मालूमात मूजिब एक्सन वन वारे उहिदे ते असिस्टेंट इंजीनियर वजाहत पाटोली खे इज़ाफ़ी चार्ज मिलियल आहे, जॾहिं त एक्सन टू वारे उहिदे ते वरी असिस्टेंट इंजीनियर अब्दुल्ला मस्तोई ऐं एक्सन थ्री जे उहिदे जे असिस्टेंट इंजीनियर ताहिर खान खे इज़ाफ़ी चार्ज मिलियल आहे। सिंध सेक्रेटरिएट जे मुख़्तलिफ़ ब्रेकुनि समेत सरकारी आफ़ीसुनि, इस्पतालुनि ऐं ॿियनि सरकारी इमारतुनि में मरमती ऐं तामीराती कमनि वारा हलंदड़ मनसूबा असिस्टेंट इंजीनियर वक़्तु हवाले करण सबबि समूरो वहिंवार सख़्त मुतासिर थी रहियो आहे। ज़रनि वटां मिलियल ॼाण मूजिब त वक़्स खाते में 14 खां 19 ताईं असिस्टेंट इंजीनियर मथे ग्रेड वारे एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर जे उहिदे ते तरक़ियूं माण जे इंतज़ार में वेठल आहिनि, पर वक़्स खाते जे अख़्तियारनि पारां ॼाणायल असिस्टेंट इंजीनियरनि जे लाइ 4 महीननि खां डीपीसी रोकी वई आहे, जंहिं करे असिस्टेंट इंजीनियर केतिरनि ई महीननि खां तरक़ियूं माण खां महरूम बणियल आहिनि। सिंध काबीना पारां मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम में वाद कैब सर्विस लाइ सेल्स टैक्स में वॾी घटताई जी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जे सदारत हेठि थियल सूबाई काबीना जे इजलास में अवामी सहूलियत लाइ अहम फ़ैसिला कया विया, जंहिं में पीपल्स मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम जे मद में 31 मई 2024 ताईं वाद कई वई। वॾे वज़ीर हिदायत कई त फ्यूल सब्सिडी जे मद में मई महीने जे लाइ 12 अरब रुपया फौरी तौर जारी कया वञनि। इजलास दौरान वॾे वज़ीर खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो वियो त हिन वक़्त ताईं 5,48,000 खां वधीक माण्हुनि खे फ्यूल सब्सिडी जी अदायगियूं जारी आहिनि, जॾहिं त हींअर ताईं 1.96 अरब रुपया विरिहाया विया आहिनि। काबीना पारां मोटरसाइकिल कैब सर्विस ऑनलाइन राइडिंग एप्स जे लाइ सेल्स टैक्स में बि वॾी घटताई कई वई आहे। ब्रीफिंग मूजिब काबीना सेल्स टैक्स खे 5% मां घटाए 2% करे छॾियो आहे, जंहिं सां सालियानो 120 मिलियन रुपियनि जो माली असर पवंदो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जो चवण हो त हिन कदम सां ऑनलाइन सर्विस फराहम कंदड़ सभई ड्राइवरनि खे सिधो सओं फ़ाइदो पहुचंदो। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन गॾियल चटाभेटीअ वारे इम्तिहान 2024 जे लिखत वारे इम्तिहान जा नतीजा जारी करे छॾिया आहिनि, जंहिं में 70 उमेदवार कामयाब करार ॾिना विया आहिनि। कामयाब उमेदवारनि खे हिदायत कई वई आहे त 7 ॾींहनि जे अंदरि तालीमी सर्टिफिकेट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे आफ़िस में जमा कराइनि। ॿिए मरहले में कामयाब उमेदवारनि खां इंटरव्यू वरितो वेंदो। नतीजनि वारे नोटिफिकेशन में ॼाणायो वियो आहे त कामयाब ऐं नाकाम थींदड़ उमेदवारनि जूं मार्कूं वेबसाइट ते रखियूं वयूं आहिनि। चटाभेटीअ जे इम्तिहान में 70 उमेदवारनि मां सभ खां वधीक कराची जा 15 उमेदवार कामयाब थिया आहिनि, जॾहिं त खैरपुर ज़िले जा 6, सखर जा 4, लाड़काणू 4, होटकी 4, मटियारी 3, उमरकोट 2, थरपारकर 2, ठट्टो 2, जामशोरो 2, दादू 2, बदीन 2, टंडो मामन खान 1, सांगड़ 2, नौशर फिरोज 1, उमरकोट 1, कंबर 1, जिकमाबाद ज़िले जा 2 ऐं कश्मोर ज़िले जा बि 1 उमेदवार कामयाब थिया आहिनि। पहिरें नंबर ते थरपारकर जो बशीर अहमद सुमरो आहे, जंहिं 610 मार्कूं हासिल कयूं आहिनि। सिंध जा टे तारीख़ी क़िला आलमी सकाफ़ती विरसे जी फहिरिस्त में शामिल। यूनेस्को मीरपुर ख़ास जे नओ कोट क़िलो, खैरपुर जो कोट डिजी क़िले ऐं उमरकोट क़िले खे पंहिंजे लिस्ट में शामिल करे छॾियो आहे। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि त अक़वामे मुतहिदा जे तालीमी, साइंसी ऐं सकाफ़ती इदारे यूनेस्को सिंध जे टिनि तारीख़ी क़िलनि खे आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल करण जे लाइ इब्तिदाई लिस्ट में बाज़ाबता तौरु शामिल करे छॾियो आहे। उन ॾस में यूनेस्को जे पाकिस्तानी नुमाइंदे नोटिफिकेशन पिण जारी कयो आहे, जंहिं में लाॻापियल इख़्तियारनि खे टिन्ही क़िलनि बाबति आगाही ॾिनी वई आहे। ॿिए तरफ़ सिंध जे क़दीमी असारनि वारे खाते जे डायरेक्टर जनरल अब्दुल फताह शेख जो चवणु आहे त नओं कोट क़िलो, उमरकोट क़िलो ऐं कोट निजी क़िलो यूनेस्को जे इब्तिदाई लिस्ट में शामिल थियण बाद टिन्ही माॻनि खे आलमी सतह ते पज़ीराई मिलंदी। हुन चयो त तारीख़ी हंधनि खे हतमी तौर लिस्ट में शामिल करण खां अॻु खेनि इब्तिदाई फ़हिरिस्त में शामिल कयो वेंदो आहे, जंहिं दौरान उन्हनि जी तारीख़ी, सकाफ़ती ऐं साइंसी इतबार खां जाइज़ो वरितो वेंदो आहे। पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। मुल्क में वधंदड़ दवाउन जी कीमत ऐं जाली दवाउन जे कारोबार अवाम जी ज़िंदगीअ खे सख़्त ख़तरे में विझी छॾियो आहे। बीमारियुनि सां विढ़ंदड़ ग़रीब माण्हू अॼु दवा ख़रीद करण जी सघ विञाए वेठो आहे। माहिरनि मूजिबि दवाउनि जे अघनि में बार बार वाध जो वॾो सबबु हुकूमत पारां क़ीमतुनि ते कंट्रोल ख़तमु करणु आहे। अॻु हुकूमत दवाउनि जी क़ीमतुनि खे ज़ाब्ते हेठि रखंदी हुई, पर आहिस्ते आहिस्ते दवा साज़ कंपनियुनि खे मुकमल आज़ादी मिली वई, जंहिंखां पोइ दवाउनि जूं क़ीमतूं केतिरा ई भेरा वधियूं। नतीजे तौर मरीज़नि लाइ इलाज कराइण ॾुखियो बणिजी वियो। ग़रीब लाइ इलाज ख़्वाब बणिजी वियो। अॼु केतिरा ई मरीज़ पंहिंजे इलाज अध में छॾे रहिया आहिनि, छाकाणि त सदन आमदनी दवाउनि जे ख़र्च अॻियां बेवस बणिजी वञे थी। केतिरा ई वालदेन पंहिंजे ॿारनि जी तालीम या घर जी ज़रूरतुनि ते ख़र्च घटाए दवाऊं ख़रीद करण ते मजबूर आहिनि। ख़ासि तौर ते दिल, शुगर, कैंसर ऐं गुर्दनि जी बीमारियुनि में इस्तेमाल थींदड़ दवाउनि जूं क़ीमतूं आम माण्हू जे बर्दाश्त खां ॿाहिरि थी वियूं आहिनि। ड्रिप ते सवालिया निशान। सिहत जे शोबे सां लाॻापियल माहिरनि ऐं समाजी हलकनि जो चवणु आहे त दवा साज़ इदारनि जी निगरानी कंदड़ इदारे ड्रिप जी कारकर्दगीअ ते सख़्त सवाल उथनि था। इल्ज़ाम आहिनि त कुझु अमलदारनि दवा साज़ कंपनियुनि सां गठजोड़ करे अवामी मुफ़ादनि जे बदिरां कारपोरेट मुफ़ादनि खे तहफ़ुज़ ॾेई रहिया आहिनि। जाली दवाउनि जे कारखाननि ख़िलाफ़ कारवायूं महदूद ऐं गैर असराइतियूं नज़र अचनि थियूं। हुकूमत लाइ अहम सवाल। जेकॾहिं रियासत पंहिंजे शहरनि खे सस्तो इलाज ऐं मयारी दवाऊं बि फराहम नथी करे सघे त पोइ उहा पंहिंजे बुनियादी ज़िमेवारी निभाइण में नाकाम सम्झी वेंदी। सिहत कंहिं बि रियासत जी बुनियादी ज़िमेवारियुनि मां हिकु आहे, पर मौजूदा हालतुनि में लॻे थो त हुकुमराननि लाइ अवामी मसइलनि खां वधीक अहमियत कारोबारी मफ़ादनि खे हासिलु आहे। माहिरनि जूं तजवीज़ूं। माहिरनि ऐं समाजी तनज़ीमुनि हुकूमत खां मुतालबो कयो आहे त दवाउनि जी क़ीमतुनि खे ॿीहर रेगुलेट कयो वञे, ड्रिप जी आज़ाद जांच कराई वञे, करप्ट अमलदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे, जाली दवाऊं ठाहींदड़नि जे लाइ ख़ासि अदालतूं क़ाइमु कयूं वञनि, सरकारी अस्पतालुनि में मुफ़्त ऐं मयारी दवाऊं फराहम कयूं वञनि, दवा साज़ कंपनियुनि ऐं डॉक्टरनि जी गठजोड़ रोकण जे लाइ शफ़ाफ़ कानून ठाहिया वञनि। गॾियल आवाज़ जी ज़रूरत। हीउ मसइलो रुॻो दवाउनि जी महांगाई ताईं महदूदु न आहे, बल्कि लखे माण्हुनि जी ज़िंदगी ऐं मौत सां जुड़ियल आहे। उन लाइ पार्लियामेंट, अदलिया, मीडिया ऐं सिविल सोसाइटीअ खे गॾिजी आवाज़ उथारणो पवंदो, जीअं अवाम खे सिहत जहिड़ो बुनियादी हक़ फराहम थी सघे। जेकॾहिं वक़्त सर क़दम न खयां विया त ग़रीब माण्हू इलाज जे खोड़ सबबि वधीक तकलीफ़ुनि ऐं मौत जे मुंह में वञण ते मजबूर थी वेंदा। हुयो हिन वक़्त जो सिंध राउंडअप। ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान। सिंध डेंटल क्लिनिक डॉक्टर रफीक अहमद कंसल्टेंट डेंटल सर्जन बीडीएस आरडीएस सीएनओ सीआरथो एचएसए इस्लामाबाद असावड़ बगैर तकलीफ जे दंद कढ़िया नवा दंद लगाया वेंदा आहिने हर कम जदीद टेक्नोलॉजी सां कयो वेंदो आहे जरासीम खां पाक औजार वक्त सुबुह 8 वगे खां मंझंद 1 वगे ताईं पतो नज़्द गुल होटल हालाणी राबते जे लाइ 0351 63 088।
1: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राबते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359210।
0: खुशखबरी खुशखबरी, हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300 583 569 0300 553 69।

0: It's 9:30 PM. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में. डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो. दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
3: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन. एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर. वधीक राबते जे लाइ 0385 569 0300 338 5569.
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर. होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर. नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे. सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे. होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद. इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर. फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी. होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी. इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहराबपुर. राबते जे लाइ 0320180003.
5: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहराबपुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर.

गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-8051।

0: तव्हांजी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: छा अहां जो चेहरो बेजान ऐं डल लॻे थो? हाणे वक़्तु आहे चमकण जो। हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सां कुदरती जुज़न सां तयार कयल, जेका ॾे कुदरती निखार, साफ़, नरम ऐं रोशन चेहरो। पहिरें इस्तेमाल में फ़र्क़ु महसूस करियो। हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, तव्हां बि चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो। हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
4: अपना शहर अपना घर महराबपुर, और महराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

सिंध राउंड अप में अॼु अव्हां ॿुधी सघंदा। सिंध सरकार पारां कोटड़ीअ खे हैदराबाद सां मिलाइण जे लाइ नई पुल अॾणु, हारियुनि ऐं ट्रांसपोर्टरनि जीअं मुहाणनि खे तेल सब्सिडी ॾियणु, बाइका मोटरसाइकिलूं हलाईंदड़नि जे लाइ सिंध सेल्स टैक्स में छूट जो ऐलान करे छॾियो। वर्क्स एंड सर्विस खाते में नवाज़िशूं, एक्सीएन जा टे अहम उहिदा असिस्टेंट इंजीनियरनि हवाले, कार वहिंवार मुतासिर। सिंध में 65 सालनि जा बुज़ुर्ग बि वीसी शिप लाइ अहल करार, बोर्ड जूं भर्तियूं सर्च कमेटीअ हवाले। वॾे वज़ीर पारां कराची जे शहरनि खे ईद जो तोहफ़ो, शहराए भुटो ईद ते ट्रैफ़िक जे लाइ खोलण जो ऐलान, रिथामी देर ऐं मयार में कोताही बर्दाश्त न कबी, वज़ीर आला सिंध। कोट जी उमरकोट ऐं नओकोट क़िला आलमी सकाफ़ती विरसे जी लिस्ट में शामिल। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 जे इम्तिहान जा नतीजा जारी करे छॾिया, 70 उमेदवार कामयाब। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अव्हां ॿुधी सघंदा, जाली दवाउनि जो कारोबार, अवाम जे ज़िंदगियुनि सां खेॾींदड़ निज़ाम। सिंध सरकार कोटड़ीअ खे हैदराबाद सां मिलाइण जे लाइ नई पुल अॾणु, हारियुनि ऐं ट्रांसपोर्टरनि जीअं मुहाणनि खे तेल सब्सिडी ॾियणु, बाइका मोटरसाइकिलूं हलाईंदड़नि जे लाइ सिंध सेल टैक्स में छूट जो ऐलान करे छॾियो। काल्ह वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जे सदारत हेठि थियल काबीना जे इजलास में 30 अरब रूपियनि जे तरक़ियाती, फलाही ऐं इस्लाही एजेंडा जी मंज़ूरी ॾिनी वई। इजलास में कराची, ठटो, सिजावल ऐं बदीन जे मुहाणनि खे फौरी माली रिलीफ फराहम करण जे लाइ 515 मिलियन रूपियनि जो फ्यूल सब्सिडी पैकेज जी मंज़ूरी ॾिनी वई। वॾे वज़ीर चयो त डीज़ल जे वधंदड़ क़ीमतुनि सबबि मच्छी जे शिकार में 20% घटिताई आई आहे, उन ई करे हज़ारे मुहाणनि जी रोज़गार खे ख़तरो पैदा थी वियो आहे। हिन स्कीम तहत 9,634 रजिस्टर्ड ॿेड़ियुनि होड़नि खे 1 खां 2 लख ताईं टारगेटेड मदद फराहम कई वेंदी। इजलास में मोटरसाइकिल मालिकनि खे मई में बि 2,000 रूपिया तेल सब्सिडी ॾियण जो फ़ैसिलो कंदे 2 अरब रूपिया जारी कया विया। इजलास में परगणे में बाइका हलाईंदड़नि ते लागू सिंध सेल्स टैक्स 5 खां घटाए 2% करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई, उन सां गॾु 120 मिलियन जो फ़ाइदो थींदो। इजलास में वॾे वज़ीर माली कमेटीअ जी सिफ़ारिश ते हैदराबाद कोटड़ी विच में सिंधू दरियाह ते 1.12 किलोमीटर डिघी हाईवे पुल जी इंजीनियरिंग डिज़ाइन जे लाइ 147.2 मिलियन रूपियनि जो कंसल्टेंट सर्विस लाइ ग्रांट जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। वॾे वज़ीर चयो त उहा पुल मुल्क जे ॿिनि इलाइक़नि ॾांहुं अच वञ जी हल्की ऐं गरी ट्रैफ़िक जे लाइ वॾी सहूलियत साबित थींदी। सिंध काबीना वाइस चांसलरनि जे मुक़ररीअ जे लाइ उमिरि जी हद 62 खां वधाए 65 साल करे छॾी, जॾहिं त ज़रूरी तजुर्बे खे 15 खां वधाए 20 साल कयो वियो आहे, जंहिं में घटि 10 HEC जूं तस्दीक थियल अशातूं लाज़मी करार ॾिनियूं वियूं आहिनि। काबीना सिंध जे 7 तालीमी बोर्डनि जे लाइ ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स एंड सर्विस रेगुलेशन 2026 जी मंज़ूरी ॾिनी, जंहिं हेठि चेयरमैन, सेक्रेटरी, कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन ऐं ऑडिट ऑफिसर जहिड़ियूं पोज़ीशनूं हाणे मयारी सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी ज़रिए भरियूं वेंदियूं। नए ज़ाब्तनि तहत चेयरमैन BPS 19 ऐं 20 जे लाइ उमिरि जी हद 40 खां 55 साल मुक़रर कई वई आहे, जंहिं लाइ मास्टर डिग्री, फर्स्ट डिवीज़न ऐं 15 सालनि जो सीनियर मैनेजमेंट तजुर्बो घुर्बल हूंदो। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह कराची जे अहम तरक़ियाती रिथाउनि जो तफ़सीली दौरो कयो ऐं लाॻापियल अमलदारनि खे हिदायत कई त कराची बस रिपिड ट्रांज़िट रेड लाइन कॉरिडोर शाराए भुटो ऐं पहलवान गोट रोड ते कम जी रफ़्तार तेज़ कई वञे, जॾहिं त सभिनी रिथाउनि में मयार ऐं शफ़ाफ़ियत खे यकीनी बणायो वञे। वॾे वज़ीर ऐलान कयो त शाराए भुटो खे ईद खां अॻु ट्रैफ़िक लाइ खोलियो वेंदो, जंहिंखे हुन कराची जे अवाम जे लाइ ईद जो तोहफ़ो करार ॾिनो। वॾे वज़ीर चयो त वसीला मौजूदु आहिनि, हाणे मूंखे ज़मीन ते नतीजा नज़र अचणु घुर्जनि, कमु केतिरनि ई शिफ्टुनि में जारी रखियो वञे त जीअं मुक़ररु वक़्त अंदरि मुकमल थिए ऐं शहरनि खे जल्द रिलीफ़ मिले। वॾे वज़ीर मौसमियात ते फ्लाई ओवर जो कमु नामुकमल ॾिसी फौरी तौर ते ॿीहर शुरू करण जी हिदायत कई ऐं यकीन ॾियारियो त फंड्स ऐं वसीला फराहम कया वेंदा। हुन चयो त शाराए भुटो शहर अंदरि ट्रैफ़िक जे दॿाउ खे घटाईंदी ऐं M9 ऐं N5 शाराहुनि जे विच में राब्ते खे बहितर बणाईंदी।
दरी ट्रैफिक शहर खां बाहर मुंतकिल थी वेंदी, जंहिं सां कराची जे रहवासियुनि खे वॾो रिलीफ मिलंदो। वर्क्स एंड सर्विस खाते में अंधेर नगरी, सूबाई बिल्डिंग डिवीजन कराची में असिस्टेंट इंजीनियर ते नवाज़िश, सूबाई बिल्डिंग्स डिवीजन जे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वारनि टिन पोस्टुनि ते मनपसंद असिस्टेंट इंजीनियरनि खे इज़ाफ़ी चार्जूं हवाले थियल। एक्सटेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वारे उहिदे ते हेठन ग्रेड जा असिस्टेंट इंजीनियर मुक़ररु हुजण सबब वहिंवार रोलहड़ जो शिकार बणियल आहे। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिब वर्क्स खाते जे इख़्तियारनि पारां असिस्टेंट इंजीनियरनि ते ख़ासि नवाज़िश कंदे खेनि एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर वारा उहिदा इज़ाफ़ी चार्ज तौर खेनि हवाले कया विया आहिनि। केतिरनि ई महीननि खां वर्क्स खाते पारां एक्सन 1, एक्सन 2 ऐं एक्सन 3 वारे उहिदे ते एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियरनि खे मुक़ररु करणु बजाए पंहिंजे मनपसंद असिस्टेंट इंजीनियरनि खे मथियनि उहिदनि ते मुक़ररु कयो वियो आहे। उन हवाले सां मिलियल मालूमात मूजिब एक्सन 1 वारे उहिदे ते असिस्टेंट इंजीनियर वजाहत पाटोली खे इज़ाफ़ी चार्ज मिलियल आहे, जॾहिं त एक्सन 2 वारे उहिदे ते वरी असिस्टेंट इंजीनियर अब्दुल्ला मस्तोई ऐं एक्सन 3 जे उहिदे जे असिस्टेंट इंजीनियर ताहिर खान खे इज़ाफ़ी चार्ज मिलियल आहे। सिंध सेक्रेटरियट जे मुख़्तलिफ़ ब्रेकनि समेत सरकारी आफ़ीसुनि, इस्पतालुनि ऐं ॿियनि सरकारी इमारतुनि में मरमती ऐं तामीराती कमनि वारा हलंदड़ मनसूबा असिस्टेंट इंजीनियर वक़्त हवाले करण सबबि समूरो वहिंवार सख़्त मुतासिर थी रहियो आहे। ज़रनि वटां मिलियल ॼाण मूजिब त वक़्त खाते में 14 खां 19 ताईं असिस्टेंट इंजीनियर मथे ग्रेड वारे एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर जे उहिदे ते तरक़ियूं माण जे इंतज़ार में वेठल आहिनि, पर वक़्त खाते जे अख़्तियारनि पारां ॼाणायल असिस्टेंट इंजीनियरनि जे लाइ 4 महीननि खां डीपीसी रोकी वई आहे, जंहिं करे असिस्टेंट इंजीनियर केतिरनि ई महीननि खां तरक़ियूं माण खां महरूम बणियल आहिनि। सिंध काबीना पारां मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम में वाद, कैब सर्विस लाइ सेल्स टैक्स में वॾी घटाई जी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि थियल सूबाई काबीना जे इजलास में अवामी सहूलियत लाइ अहम फ़ैसिला कया विया, जंहिं में पीपल्स मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम जे मद में 31 मई 2024 ताईं वाद कई वई। वॾे वज़ीर हिदायत कई त फ्यूल सब्सिडी जे मद में मई महीने जे लाइ 12 अरब रुपया फौरी तौर जारी कया वञनि। इजलास दौरान वॾे वज़ीर खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो वियो त हिन वक़्त ताईं 5,48,000 खां वधीक माण्हुनि खे फ्यूल सब्सिडी जी अदायगियूं जारी आहिनि, जॾहिं त हींअर ताईं 1.96 अरब रुपया विरिहाया विया आहिनि। काबीना पारां मोटरसाइकिल कैब सर्विस ऑनलाइन राइडिंग एप्स जे लाइ सेल्स टैक्स में बि वॾी घटिताई कई वई आहे। ब्रीफिंग मूजिब काबीना सेल्स टैक्स खे 5% मां घटाए 2% करे छॾियो आहे, जंहिं सां सालियानो 120 मिलियन रुपियनि जो माली असर पवंदो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जो चवणु हो त हिन क़दम सां ऑनलाइन सर्विस फराहम कंदड़ सभई ड्राइवरनि खे सिधो सओं फ़ाइदो पहुचंदो। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन गॾियल चटाभेटीअ वारे इम्तिहान 2024 जे लिखत वारे इम्तिहान जा नतीजा जारी करे छॾिया आहिनि, जंहिं में 70 उमेदवार कामयाब करार ॾिना विया आहिनि। कामयाब उमेदवारनि खे हिदायत कई वई आहे त 7 ॾींहनि जे अंदरि तालीमी सर्टिफिकेट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे आफ़ीस में जमा कराइनि। ॿिए मरहले में कामयाब उमेदवारनि खां इंटरव्यू वरितो वेंदो। नतीजनि वारे नोटिफिकेशन में ॼाणायो वियो आहे त कामयाब ऐं नाकाम थींदड़ उमेदवारनि जूं मार्कूं वेबसाइट ते रखियूं वियूं आहिनि। चटाभेटीअ जे इम्तिहान में 70 उमेदवारनि मां सभ खां वधीक कराची जा 15 उमेदवार कामयाब थिया आहिनि, जॾहिं त खैरपुर ज़िले जा 6, सखर जा 4, लाड़काणू 4, होटकी 4, मटियारी 3, उमरकोट 2, थरपारकर 2, ठट्टो 2, जामशोरो 2, दादू 2, बदीन 2, टडो मामन खान 1, सांगड़ 2, नौशर फिरोज 1, उमरकोट 1, कंबर 1, जिकमाबाद ज़िले जा 2 ऐं कश्मोर ज़िले जा बि 1 उमेदवार कामयाब थिया आहिनि। पहिरें नंबर ते थरपारकर जो बशीर अहमद सूमरो आहे, जंहिं 610 मार्कूं हासिल कयूं आहिनि। सिंध जा 3 तारीख़ी क़िला आलमी सकाफ़ती विरसे जी फ़हिरिस्त में शामिल। यूनेस्को मीरपुर ख़ास जे नओं कोट क़िलो, खैरपुर जो कोटडीज क़िले ऐं उमरकोट क़िले खे पंहिंजे लिस्ट में शामिल करे छॾियो आहे। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिब त अक़वाम मुतहिदा जे तालीमी, साइंसी ऐं सकाफ़ती इदारे यूनेस्को सिंध जे 3 तारीख़ी क़िलनि खे आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल करण जे लाइ इब्तिदाई लिस्ट में बाज़ाबता तौर शामिल करे छॾियो आहे। उन ॾस में यूनेस्को जे पाकिस्तानी नुमाइंदे नोटिफिकेशन पिण जारी कयो आहे,
जंहिंमें लाॻापियल इख़्तियारनि खे टिन्ही क़िलनि बाबति आगाही डि॒नी वई आहे। ॿिए तरफ़ सिंध जे क़दीमी असारनि वारे खाते जे डायरेक्टर जनरल अब्दुल फताह शेख जो चवण आहे त नओं कोट क़िलो, उमर कोट क़िलो ऐं कोट निजी क़िलो यूनेस्को जे इब्तिदाई लिस्ट में शामिल थियण बाद टिन्ही माॻनि खे आलमी सतह ते पज़ीराई मिलंदी। हुन चयो त तारीख़ी हंधनि खे हतमी तौर लिस्ट में शामिल करण खां अॻु खेनि इब्तिदाई फ़हरिस्त में शामिल कयो वेंदो आहे, जंहिं दौरान उन्हनि जी तारीख़ी, सकाफ़ती ऐं साइंसी इतबार खां जाइज़ो वरितो वेंदो आहे।

पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। मुल्क में वधंदड़ दवाउन जी कीमत ऐं जाली दवाउन जे कारोबार अवाम जी जिंदगी के सख्त खतरे में विझी छड़ियो आहे। बीमारियुनि सां विरड़ंदड़ गरीब माण्हू अॼु दवा ख़रीद करण जी सघ विञाए वेठो आहे। माहिरनि मूजिबि दवाउनि जे अघनि में बार बार वाध जो वॾो सबबु हुकूमत पारां क़ीमतुनि ते कंट्रोल ख़तमु करणु आहे। अॻु हुकूमत दवाउनि जी क़ीमतुनि खे ज़ाब्ते हेठि रखंदी हुई, पर आहिस्ते आहिस्ते दवा साज़ कंपनियुनि खे मुकमल आज़ादी मिली वई, जंहिं खां पोइ दवाउनि जूं क़ीमतूं केतिरा ई भेरा वधियूं। नतीजे तौर मरीज़नि लाइ इलाज कराइण ॾुखियो बणिजी वियो। गरीब लाइ इलाज ख़्वाब बणिजी वियो। अॼु केतिरा ई मरीज़ पंहिंजे इलाज अध में छॾे रहिया आहिनि, छाकाणि त सदन आमदनी दवाउनि जे ख़र्च अॻियां बेवस बणिजी वञे थी। केतिरा ई वालदेन पंहिंजे ॿारनि जी तालीम या घर जी ज़रूरतुनि ते ख़र्च घटाए दवाऊं ख़रीद करण ते मजबूर आहिनि। ख़ासि तौर ते दिल, शुगर, कैंसर ऐं गुर्दनि जी बीमारियुनि में इस्तेमाल थींदड़ दवाउनि जूं क़ीमतूं आम माण्हू जे बर्दाश्त खां ॿाहिरि थी वियूं आहिनि। ड्रिप ते सवालिया निशान। सिहत जे शोबे सां लाॻापियल माहिरनि ऐं समाजी हलकनि जो चवणु आहे त दवा साज़ इदारनि जी निगरानी कंदड़ इदारे ड्रिप जी कारकर्दगी ते सख़्त सवाल उथनि था। इल्ज़ाम आहिनि त कुझु अमलदारनि दवा साज़ कंपनियुनि सां गठजोड़ करे अवामी मुफ़ादनि जे बदिरां कार्पोरेट मुफ़ादनि खे तहफ़ुज़ ॾेई रहिया आहिनि। जाली दवाउनि जे कारखाननि ख़िलाफ़ कार्रवायूं महदूद ऐं गैर असराइतियूं नज़र अचनि थियूं। हुकूमत लाइ अहम सवाल। जेकॾहिं रियासत पंहिंजे शहरनि खे सस्तो इलाज ऐं मयारी दवाऊं बि फराहम नथी करे सघे त पोइ उहा पंहिंजे बुनियादी ज़िमेवारी निभाइण में नाकाम सम्झी वेंदी। सिहत कंहिं बि रियासत जी बुनियादी ज़िमेवारियुनि मां हिकु आहे, पर मौजूदा हालतुनि में लॻे थो त हुकुमराननि लाइ अवामी मसइलनि खां वधीक अहमियत कारोबारी मफ़ादनि खे हासिलु आहे। माहिरनि जूं तजवीज़ूं। माहिरनि ऐं समाजी तनज़ीमुनि हुकूमत खां मुतालबो कयो आहे त दवाउनि जी क़ीमतुनि खे ॿीहर रेगुलेट कयो वञे, ड्रिप जी आज़ाद जांच कराई वञे, करप्ट अमलदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे, जाली दवाऊं ठाहींदड़नि जे लाइ ख़ासि अदालतूं क़ाइम कयूं वञनि, सरकारी अस्पतालुनि में मुफ़्त ऐं मयारी दवाऊं फराहम कयूं वञनि, दवा साज़ कंपनियुनि ऐं डॉक्टरनि जी गठजोड़ रोकण जे लाइ शफ़ाफ़ कानून ठाहिया वञनि। गॾियल आवाज़ जी ज़रूरत। हीउ मसइलो रुॻो दवाउनि जी महांगाई ताईं महदूदु न आहे, बल्कि लखे माण्हुनि जी ज़िंदगी ऐं मौत सां जुड़ियल आहे। उन लाइ पार्लियामेंट, अदलिया, मीडिया ऐं सिविल सोसाइटीअ खे गॾिजी आवाज़ उथारणो पवंदो, जीअं अवाम खे सिहत जहिड़ो बुनियादी हक़ फराहम थी सघे। जेकॾहिं वक़्त सर क़दम न खयां विया त ग़रीब माण्हू इलाज जे खोट सबबु वधीक तकलीफ़ुनि ऐं मौत जे मुंहं में वञण ते मजबूर थी वेंदा।

0: ही हुयो हिन वक्त जो सिंध राउंडअप बे आचर जे सिंध राउंडअप तई गुलाब खान भेण के दिना इजाजत अल्लाह निगहबान।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।